0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
2: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
3: आई एम मेंबर ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प क्लब्स।
0: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फॉरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का 8वां विमान काठमांडू पहुंचा। तमिलनाडु में मदुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 तारीख है। महिला एशिया कप

London. कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। आज हूँ मैं आपके साथ प्रतिभा, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के श्रोता हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी कि 819 किलो हर्ट्ज पर। घर आंगन की आज की कड़ी में हम लेकर आए हैं जानकारियां और मनोरंजन भी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपका अपना कार्यक्रम घर आंगन। तो सबसे पहले आज बात करेंगे हम दिन विशेष की। जी हां, आज के दिन विशेष में हम याद कर रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत जी को। हर वर्ष 10 सितंबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। वे स्वतंत्रता सेनानी, कुशल प्रशासक और देश के प्रमुख नेताओं में उनका नाम शामिल रहा है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और आप उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे और काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया, और बाद में वे भारत के गृह मंत्री भी बने। देश के उनके योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गोविंद वल्लभ पंत जी का जीवन देश सेवा, जन कल्याण और दृढ़ नेतृत्व की प्रेरणादायी मिसाल है। उनकी जयंती पर हम उनके योगदान को याद करते हैं और उन्हें हम नमन करते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, फिल्म थी ममता। और श्रोताओं, आज बात करेंगे एक माँ के संकल्प की, जिसने ठान लिया कि वो अपनी बेटियों की पढ़ाई में आने वाली हर मुश्किल का सामना कर उनके शिक्षा के सफर को रुकने नहीं देगी। वो उस सफर में अपनी बेटियों के लिए वो दाल बना रही है, खाना बना रही है, उनके साथ चली और यहाँ तक कि दौड़ी भी। महाराष्ट्र के बीड जिले की 47 वर्षीय रमाबाई रणवीर इसकी मिसाल है। पति के निधन के बाद उन्होंने अपनी दो बेटियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई। रमाबाई अपने शहर के एक एकेडमी में, वहां की रसोई घर में काम करती हैं, वहां हॉस्टल में बच्चों के लिए वहां पर खाना बनाती हैं और रोज वो 200 से ज्यादा रोटियां वहां पर बनाती हैं। तो सारा दिन वो वहां बिजी रहती हैं। और एक दिन हुआ ये कि उनकी जो छोटी बेटी है उसने पढ़ाई, अपने खाने और किराए के लिए उनसे पैसे मांगे, क्योंकि उनकी बेटी नांदेड़ में एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। तो उस समय रमाबाई के पास पैसे नहीं थे। उसी दौरान उन्हें पता चला कि अगले दिन बीड़ शहर में एक मैराथन दौड़ का आयोजन हो रहा है, जिसमें उन्होंने भाग लिया। रमाबाई ने कभी दौड़ की कोई खास ट्रेनिंग नहीं ली हुई थी, फिर भी अगले सुबह वो उस दौड़ में साड़ी पहनकर चली गई। और ना उनके पास ट्रैक सूट था, ना ही फॉर्मल शूज थे, मतलब कोई ऐसे दौड़ने के लिए उनके पास जूते भी नहीं थे, तो वो अपनी चप्पलों में ही वहां पर दौड़ने लगी। तो दौड़ते दौड़ते उनकी चप्पल में पैर फिसलने लगा, स्लिप करने लगा, तो उन्होंने चप्पल उतार दी और फिर वो बिना रुके नंगे पांव दौड़ती रही, उनके कदम बिल्कुल नहीं रुके। 3 किलोमीटर की इस दौड़ में उन्होंने खूब मशक्कत की। सामने सिर्फ और सिर्फ उन्हें मंजिल नजर आ रही थी और वो थी कि उनकी बेटी की पढ़ाई वो पूरी होनी है, उसकी जरूरत के लिए उन्हें वो इनाम जीतना बहुत जरूरी था। तो वो इस दौड़ में जीत भी गई और इनाम की राशि उनको मिल गई। श्रोताओं, रमाबाई की कहानी हमें याद दिलाती है कि माँ का हौसला परिस्थितियों से कहीं बड़ा होता है। उनके लिए ये दौड़ सिर्फ दौड़ नहीं थी, बल्कि ये अपनी बेटी के सपनों को थामे रखने की दौड़ थी।

राजा और रंक। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज थी लता मंगेशकर की। और देखिए श्रोताओं, बात सही भी है, माँ बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होती है और हर बच्चे के लिए

माँ बहुत खास होती है, उसकी सुख दुख हर समय की हर क्षण की साथी माँ ही तो होती है। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की व्यस्त और भागदौड़ भरी जिंदगी की। आज जिंदगी इतनी व्यस्त हो चुकी है जैसा कि हम सभी जानते हैं, और इस भागदौड़ भरी जिंदगी ने ना हमसे हमारा और अपनों का वक्त चुरा लिया है। हम व्यस्त हैं पर फिर भी हम कहीं ना कहीं मानसिक तनाव और दबाव को झेल रहे होते हैं। मन में चलता द्वंद डिप्रेशन तनाव और चिंता का कारण बनता है, और ऐसे में जरूरत होती है एक सकारात्मक संवाद की। टेलीमानस मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ये सकारात्मक पहल है। इसके तहत टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स को देशव्यापी टोल फ्री हेल्पलाइन के रूप में शुरू किया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए व्यक्ति टेलीफोन आधारित मनोचिकित्सा, मनोरोग परामर्श और रेफरल सेवाओं, जिनमें आपातकालीन देखभाल भी शामिल है, का लाभ उठा सकते हैं। श्रोताओं, टेली मानस उन व्यक्तियों के लिए जीवन रेखा का काम करता है जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। टेली मानस का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक प्रमुख डिजिटल घटक के रूप में 24/7 टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से सभी को समान, किफायती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है। ये सेवा भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है। देश भर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना इसका उद्देश्य है, और ये सुनिश्चित करना कि भारत भर में कोई भी व्यक्ति प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इस समर्पित टेली मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से किसी भी समय सहायता प्राप्त कर सके। ये अलग अलग स्तर पर काम करती है, और इसमें होता ये है कि आप इसके टोल फ्री नंबर पर आपको जब जरूरत है कॉल कर सकते हैं। हम आपको इसका टोल फ्री नंबर बता दें जो कि है 1-4-4-1-6, जी हाँ 1-4-4-1-6, या 1-800-891-4-4-1-6। ये पूरी तरह से टोल फ्री नंबर है। इस पर होता ये है कि आप जब इस पर फोन करते हैं या आपको किसी आपको या आपके किसी अपने को विशेष इलाज की जरूरत होती है तो उसे जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम या मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों के पास रेफर किया जाता है, जिसमें वीडियो कंसल्टेशन, ई संजीवनी के माध्यम से या आमने सामने की मुलाकात शामिल होती है। श्रोताओं, ये टेलीफोन सेवा 20 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है ताकि लोग अपनी पसंद की भाषा में बात कर सकें। इस पर की जाने वाली हर कॉल पूरी तरह से और सलाह भी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। तो यदि आप या आपका कोई अपना मानसिक समस्या से जूझ रहा है तो आप टेली मानस के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, जो व्यक्ति उदास है, जो बात करना चाहता है, उनसे बात करिए। अगर जरूरत पड़े तो टेली मानस से सहायता लीजिए।

और मन्ना डे को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी रात और दिन। श्रोताओं, महिला अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकती। वो बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करना जानती है और उन मुश्किलों को पार कर आत्मनिर्भर भी बन रही है। ऐसी ही मिसाल पेश की है गाजियाबाद की बबीता शर्मा ने। बबीता शर्मा अकेले अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारी उठा रही हैं। उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सड़क किनारे पूजा सामग्री बेचने का छोटा सा ठेला लगाया। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। जरूरत होती है बस आत्मविश्वास की, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। और बबीता शर्मा को जब पीएम स्वनिधि योजना के तहत आर्थिक मदद मिली तो उन्होंने इस मदद के जरिए अपने ठेले को एक पक्की दुकान में बदल लिया और अपने कारोबार का विस्तार किया। आज बबीता आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर जीवन भी दे रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में उनके संघर्ष और सफलता की सराहना की और देश के लिए उन्हें प्रेरणा स्रोत भी बताया है। हम बबीता जी को उनके इस अथक प्रयास और सफलता के लिए बधाई देते हैं। और श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि हमने बबीता शर्मा जी से आकाशवाणी के स्टूडियो में उनको बुलाकर उनसे बात की है, तो बहुत ही जल्दी आप बबीता शर्मा की बातचीत किसी दिन इसी कार्यक्रम में सुनेंगे।

किशोर कुमार और आशा भोसले को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी सीता और गीता। अब बात करते हैं ट्रेवल इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए एक अच्छे करियर विकल्प की। जी हाँ, एयर टिकट बुकिंग से लेकर टूर प्लानर, टूर गाइड बनकर महिलाएं अपने भी शौक को पूरा कर सकती हैं और लोगों के घूमने के शौक को पूरा करवा सकती हैं। एविएशन इंडस्ट्री यानी कि जो उड्डयन उद्योग है, का ये एक ऐसा क्षेत्र है जो सम्मान, अच्छी सैलरी और देश विदेश के लोगों से जुड़ने का मौका देता है। तो क्यों ना आज बात करें ट्रेवल इंडस्ट्री की, कि इसे आप अपना करियर क्यों और कैसे चुने। यहाँ आपको अलग अलग देशों की संस्कृति और लोगों को समझने का मौका मिलता है। वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करें तो एयरपोर्ट और कॉरपोरेट ऑफिस का माहौल काफी सुरक्षित, आधुनिक और प्रोफेशनल होता है। कई एयरलाइंस अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को मुफ्त या डिस्काउंटेड हवाई टिकट की सुविधा भी देती है। यहाँ पर जो काम होता है वो 24/7 होता है, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार शिफ्ट भी चुन सकती हैं। तो अब बात करते हैं जरूरी योग्यता की। इस फील्ड में एंट्री करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद कुछ कोर्सेज कर सकती हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट एंड एयर टिकटिंग, डिप्लोमा इन ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। इसके अलावा अच्छी बातचीत करने की कला, यानी कि आपके पास अगर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल, अंग्रेजी और किसी अन्य विदेशी भाषा का ज्ञान है, तो वो भी खास मायने रखता है। कोर्स पूरा करने के बाद महिलाओं के लिए कई तरह के अवसर खुलते हैं, जैसे कि एयरलाइंस टिकटिंग एग्जीक्यूटिव, एयरलाइन या एयरपोर्ट ऑफिस में जॉब, ट्रेवल कंसल्टेंट, या आप एजेंट्स भी बन सकते हैं, और बड़ी ट्रेवल कंपनियों में कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ के तौर पर आपको काम मिल सकता है। आप यहां पर काम कर सकते हैं। तो अगर आपका भी सपना है देश विदेश की यात्रा करना, लोगों को यात्राएं करवाना, तो ये एविएशन इंडस्ट्री यानी कि जो उड्डयन उद्योग है वो आपके लिए है।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी गाइड। श्रोताओं, आज बच्चे अपने सपनों को पूरा करने के लिए घरों से दूर जाते हैं ताकि एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके, और माता पिता भी उनके भविष्य निर्माण में उनका पूरा सहयोग करते हैं। आज शैक्षणिक संस्थानों में कहीं कहीं रहने की सुविधा की कहीं कमी के चलते घरों से दूर बच्चों को आज हॉस्टल्स और पीजी में रहना पड़ता है। लेकिन आज जरूरी हो गया है कि कुछ सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाए ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। अगर आप अपने बच्चों के लिए पीजी देख रहे हैं या बच्चे खुद भी देख रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि सुरक्षा, सफाई, पानी, भोजन और सुविधा के आधार पर पीजी की रेटिंग क्या है। जी हाँ, रेटिंग चेक करना बहुत जरूरी है। पीजी और किराए के भवन की सुरक्षा जांच हो रखी है या नहीं, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ एक लिखित एग्रीमेंट होना भी खास है, क्योंकि एग्रीमेंट में सब कुछ, जो टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, जो शर्तें होती हैं, वो सब लिखी रहती हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि आग से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम है या नहीं। सुरक्षित निकास और आपातकालीन नंबर पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए, ये तो छोटी छोटी बातें हो गई जो बच्चों को, अभिभावकों को ध्यान रखने की जरूरत है जब

0: पीजी लेने जाएं या किसी बाहर हॉस्टल में कमरा अपने बच्चों के लिए ढूंढ रहे हैं या बच्चे खुद ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा जो बिल्डिंग मालिक हैं जो इन पीजीज को चला रहे हैं उनके लिए भी कुछ गाइडलाइन है कि उनको भी इमारतों की सुरक्षा के लिए स्थानीय नियमों का पालन करना चाहिए। इमारतों के लिए उनके पास आवश्यक सर्टिफिकेट होने चाहिए, जैसे कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अवश्य लें। समय समय पर वे इमारत का सुरक्षा ऑडिट भी करवाएं, जो कि बहुत जरूरी है ताकि जो छात्र और छात्राएं हैं, जो बच्चे बाहर से आते हैं, वो सुरक्षित रहें, जो आपके लिए भी अच्छा है और हमारे भी लिए भी अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि छात्र छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। तो मुनाफे को अलग रख बच्चों की सुरक्षा को अहमियत देना बहुत जरूरी है।
1: दीवाना
2: एक दीवाना शहर में
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी
2: दो दीवाने शहर में।

भूपेंद्र और रूना लैला की आवाज में अभी आप ये गीत सुन रहे थे। फिल्म थी घरौंदा। श्रोताओं, आज मार्केट में सुंदर सुंदर और सुगंधित मोमबत्तियां बड़ी ही सुंदर पैकेजिंग और ग्लास जार में मिलती है, जो न केवल घरों की सुंदरता बढ़ाती है बल्कि अरोमा थेरेपी के लिए भी एक शानदार गृह उद्योग है, जो न केवल महिलाओं की रचनात्मकता को बढ़ाता है साथ ही कमाई का बेहतरीन साधन भी ये बन सकता है। कि अगर कोई महिला इस मोमबत्ती उद्योग से जुड़ी, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस उद्योग से जुड़ी हुई है और जो अपने घर में शुरू होने वाले इस कम लागत वाले बिजनेस को अपने घर से ही शुरू कर रही हैं, और जो ऐसा जो महिलाएं कर रही हैं आज वो आत्मनिर्भर भी बन गई हैं। तो अगर आप में से भी कोई ऐसी महिला है जो इस व्यवसाय से जुड़ना चाहता है और जुड़कर स्वयं को सशक्त करने का सपना देख रहा है, तो जुड़िए कैंडल मेकिंग से और अपनी रचनात्मकता को दीजिए उस उड़ान के पंख जो आपको कामयाबी का आसमान देगा। और सबसे खास बात यह है कि आप कई तरह के विशेष प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे तनाव कम करने के लिए लेवेंडर, लेमन ग्रास, वेनिला जैसी सुगंध वाली मोमबत्तियां, त्योहारों, शादियों, पार्टियों के लिए रंग बिरंगे और अलग अलग आकार में बनी हुई मोमबत्तियां आजकल लोगों में काफी लोकप्रिय है। और साथ ही साथ आजकल लोग केमिकल फ्री सोया वैक्स या बी वैक्स से बनी मोमबत्तियों को भी काफी पसंद कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि आप कम लागत से इस उद्योग की शुरुआत कर सकती हैं और अपने बनाए बेहतरीन प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया, ई कॉमर्स वेबसाइट और स्थानीय बाजारों में आसानी से बेच सकती हैं। त्योहारों के सीजन में स्थानीय मेलों, सोसाइटियों या प्रदर्शनियों में स्टॉल लगाए जा सकते हैं। गिफ्ट शॉप्स, इवेंट प्लानर्स से आप टाई अप करके थोक ऑर्डर भी प्राप्त कर सकती हैं। और अगर सफलता के मूल मंत्रों की बात करें कि अगर आप इस व्यवसाय से जुड़ना चाहती हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है, एक सुंदर और आकर्षक पैकेजिंग आपकी मोमबत्ती की कीमत और उसकी वैल्यू को बढ़ाएगी। यानी कि जब आप इस उद्योग में आए तो आप सिर्फ उसकी बनाने पर ध्यान नहीं दें, उसके आप पैकेजिंग का भी ध्यान देंगे, आप उसकी जो आप उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इसेंशियल ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं या जो वैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसकी क्वालिटी से समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे, आप हर एक चीज का ध्यान रखेंगे। और हाँ, कि अगर आप बिगनर हैं तो छोटे से कोर्स से आप शुरुआत कर सकते हैं या ऑनलाइन आप इसको सीखते रहिए, ताकि आपके काम में जो है ना वो बेहतरी से वो काम होता रहे और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से रिफाइन करते जाएं और अपने उद्योग को आगे बढ़ाते जाएं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी कारमा। श्रोताओं, ये कार्यक्रम घर आंगन है जहां आप हमसे जुड़ते हैं और हम आपसे जुड़ते हैं, और हम सभी जानते हैं कि जो ये रिश्ता है ये आवाज का जरिया है जिसके द्वारा हम आपसे संवाद करते हैं, और आपके जो संवाद होते हैं वो हमारे साथ होता है आपकी प्रतिक्रियाओं से, आपके सुझावों से, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो आप हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़ते रहिए कार्यक्रम घर आंगन में, अपने मेल के जरिए, अपनी प्रतिक्रियाओं के जरिए, क्योंकि आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रियाएं हमें अपने कार्यक्रम को बेहतर बनाने का अवसर देती है। तो हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है, और आप सभी जानते हैं कि आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। जी हाँ, fmgoldga@gmail.com।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे हैं, फिल्म है इंतकाम। और देखिए घड़ी मुझे इशारा कर रही है कि मैं अपने श्रोताओं से लूं अनुमति, तो आज के इस सफर में आपको यहीं छोड़ जाती हूं इस गीत के साथ। तो मुझे यानी प्रतिभा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में कृषि क्षेत्र में सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने मलेशिया के कृषि मंत्री मोहम्मद बिन साबू के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत के जरिए करने पर सहमति जताई। म्यांमा के कृषि मंत्री मिननोंग के साथ बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स से WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
1: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
0: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली पुलिस ने 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत ये आदेश जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें ये संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसे हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु में मधुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 19 सितंबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। कच्चे तेल की कीमत कल $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 74,869 जबकि निफ्टी 27 अंक बढ़कर 23,459 पर रहा। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

0: kilohertz, diğerim artı 10 kilohertz bit.
1: Hey girls!
2: Hi!
1: आज तो पार्टी चाहिए.
2: Hey, champion के साथ सेल्फी लेंगे.
3: Idea. यही करते हैं पार्टी.
1: Pizza party. Yes. चल अपना कार्ड और पिन दे.
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी. RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें. ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें.
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग.
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
0: श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 1:10 और ये हुए पूरे 54 सेकंड. स्वागत है आप सभी का. और ये जो वक्त है, ये वक्त है उस कार्यक्रम का जिसका नाम है एक ही फिल्म से. और आज आपके साथ जो फिल्म लेकर मैं आ रही हूँ वो अपने आप में बेहद खूबसूरत फिल्म है, बहुत संगीतमय फिल्म है. और आप ये जो सफर तय करेंगे, जी हाँ, ये सफर आप तय करेंगे आपकी रेडियो हम सफर सोनाली के साथ. कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार. दोस्तों, कभी कभी कोई फिल्म अपने समय में उतनी चर्चा नहीं पाती, लेकिन उसके गीत बरसों बाद भी यादों के किसी कोने से निकलकर सामने आ जाते हैं. ऐसी ही एक फिल्म है संगीत. माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 1992 में आई थी और इसका निर्देशन किया था दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्मकार के विश्वनाथन ने. फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन जिसके भीतर संगीत की दुनिया बेहद उजली है. वह अनाथ है, नेत्रहीन है और गायिका बनने का सपना देखती है. उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जो उसके हुनर को पहचानता है और उसकी इस यात्रा में उसका साथ देता है. तो इस यात्रा में साथ तो वो व्यक्ति देता ही है उसका, लेकिन इस यात्रा को हम भी यहाँ शुरू करते हैं और सुनते हैं फिल्म संगीत का पहला गीत.

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रही हैं फिल्म संगीत की, और इस फिल्म की जो सबसे बड़ी खासियत थी ना, वो थी माधुरी दीक्षित की दोहरी भूमिका। उन्होंने माँ और बेटी दोनों किरदार निभाए हैं, और एक तरफ वो एक ऐसी लड़की है जो अपनी आवाज़ के सहारे दुनिया को महसूस करती है, और दूसरी तरफ वो एक माँ है जिसके भीतर अपनी संतान से बिछड़ने का दर्द है। दोनों

करती है और दूसरी तरफ वो एक माँ है जिसके भीतर अपनी संतान से बिछड़ने का दर्द है। दोनों किरदारों के स्वभाव और भावनाओं में फर्क पैदा करना आसान नहीं था, लेकिन माधुरी दीक्षित ने इसे बहुत खूबसूरती से निभाया और शायद के विश्वनाथ की संवेदनशीलता का असर भी यहाँ दिखाई देता है। दोस्तों, उन्होंने फिल्मों में संगीत केवल गीतों के बीच आने वाला विराम नहीं होता था, मतलब अगर देखा जाए तो फिल्मों में उनका जो संगीत होता था वो हमेशा कहानी को आपस में जोड़ता था, कनेक्ट करता था, और संगीत फिल्म में भी वही बात हमने बार बार महसूस की है। और ये जो कहानी का एक हिस्सा बन गया इस फिल्म का संगीत, और चूंकि नाम भी फिल्म का संगीत है तो इसके गीतों का अलग तरह का होना बहुत लाजमी है। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं फिल्म संगीत में जो म्यूजिक था, म्यूजिक डायरेक्टर हैं आनंद मिलिंद, इनकी धुनें हैं और जो गाने लिखे हैं वो संतोष आनंद ने लिखे हैं। और एक तरफ तो बहुत सारे भावुक और मधुर गीत भी हैं इस फिल्म में, लेकिन इस फिल्म का एक गाना जो हम लोग हमेशा याद करते हैं और अभी भी सुन करके एक अलग सी ऊर्जा और एक अलग सी चंचलता महसूस होती है, वो है जॉली मुखर्जी की आवाज़ से एक गाना है। और वो गाना देखिए कौन सा है, मैं मानती हूँ आप भी इस गाने को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें एक अलग सी मस्ती है और इसमें जैकी श्रॉफ का जो एक अलग अंदाज आपको नजर आएगा वो आपको इस गाने को सुनकर दोबारा आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जब आपने शायद पहली बार इस फिल्म को देखा था। तो आप इसे किस किस ने संगीत फिल्म को देखा ये मुझे बताइए, और आपको इसमें कौन सा गाना सबसे बेहतरीन लगता है ये भी जरूर बताइएगा। लेकिन आप जब तक मुझे ये सवालों के जवाब दें तब तक मैं आपको ये वाला गाना, जी हाँ कौन सा, ये वाला जरूर सुनाना चाहूंगी।

जी हाँ, आप लोगों से पता पूछने की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बकायदा बहुत खूबी के साथ हमारे साथ जुड़ जाते हैं और इतनी खूबसूरत बातें आपके साथ में हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं ना। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ हमारे साथ कौन कौन जुड़ी है। हमारे साथ जुड़ी है हरजिंदर सिंह भाटिया, ये स्टेशन रोड जमशेदपुर से हैं। इनके साथ एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया और तमन्ना भाटिया। फिर हमारे साथ हैं जगराम साहू, और ये है हमारे साथ ग्राम नगर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। और ये कह रहे हैं कि हमने ये फिल्म देखी है पर बहुत पहले, और आज आपके साथ फिल्म को दोबारा देख रहे हैं। देखिए, यही तो बात है ना कि हम लोग हमेशा पुराने लम्हों को दोहराते रहते हैं और यही रेडियो का सबसे बेहतरीन रूप है, है ना। और देखिए यहाँ पर हमारे साथ फिर कौन है, ये है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। और संगीत पिक्चर के बारे में वो कह रहे हैं कि इन्हें इन्फॉर्मेशन, मूवी, सॉन्ग सब बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। फिर है हमारे साथ हीरामणि वर्मा ततरंगी भाटापारा से, और इन्हें भी फिल्म के बारे में बातें सुनकर अच्छा लग रहा है। संजय ढिंगिया जी हैं, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह, और ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए फिर अपने चिरपरिचित अंदाज में कौन हमारे साथ है, धर्मेंद्र छीपा जी, और ये इन्होंने सब कुछ बता दिया है कि इसमें क्या क्या है, और इन्हें अच्छी लग रही है जानकारियां। ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा धर्मेंद्र जी, और शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपके साथ है कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, और फिर है संदीप मक्कड़ जी, इनके साथ हैं ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, धर्मवीर जी, और ये धर्मवीर जी दिल्ली वाले पिंगा वाला चौक गोरैया जालंधर से हमारे साथ जुड़े हैं। फिर देखिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए हमारे साथ। फिर बाकी दोस्तों के बारे में भी बताऊंगी कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है, लेकिन उसके पहले आइए हम लौटते हैं फिल्म संगीत की ओर, जहां पर हम आपसे बात कर रहे हैं 1992 में रिलीज हुई फिल्म संगीत के बारे में, जिसमें माधुरी दीक्षित की दोहरी भूमिकाएं थी, साथ में थे जैकी श्रॉफ। और अगर हम इस फिल्म की बात करते हैं ना, तो दोस्तों इस फिल्म में ना एक बहुत अलग सी बात है। देखिए इसमें प्रेम तो है, दो रोमांस है, प्रेम है, लेकिन इसके साथ में प्रेम के कई रूप है। एक है हुनर पर विश्वास करना, खुद पर विश्वास करना, किसी का हाथ थामकर आगे बढ़ना, और फिर है माँ और बेटी का एक रिश्ता, और सबसे बढ़कर है अपने होने की पहचान तलाशना। एक नेत्रहीन लड़की के लिए संगीत सिर्फ कला नहीं है, वो उसकी दुनिया को समझने का माध्यम है। और हम दुनिया को आंखों से देखते हैं, लेकिन वो उसे सुरों से महसूस करती है। और यही इस फिल्म का सबसे सुंदर विचार लगता है कि दुनिया को देखने के लिए आंखें जरूरी हैं, लेकिन उसे महसूस करने के लिए संवेदनशील मन सबसे ज्यादा जरूरी है ना।

अनुराधा पोंटवाल के साथ आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर की आवाज में ये बहुत प्यारा सा गीत। और देखिए हम लोग बात कर रहे हैं फिल्म संगीत की, तो इसमें सेतु की भूमिका में जैकी श्रॉफ थे और निर्मला यानी माँ की भूमिका में माधुरी दीक्षित और संगीता फिर से माधुरी दीक्षित। तो अपनी डबल रोल के साथ हमें माधुरी दीक्षित इस फिल्म में नजर आई है। इनके साथ में जो बाकी कलाकार थे वो थे नीतीश भारद्वाज, परीक्षित साहनी, शफी इनामदार, अरुणा ईरानी, आशा शर्मा, सतीश शाह और अंजन श्रीवास्तव। देखिए फिल्म का जो अगर हम कथानक की बात करते हैं तो अगर संक्षेप में आपको कहानी के बारे में बताऊं तो जो सीनियर माधुरी दीक्षित है मतलब निर्मला जी सेतु को एक लोक गायक को सुनती है एक जगह परफॉर्म करते हुए, वही वाला गाना सुनो हसीना काजल वाली, तो वो सुन करके वो उसे अपने यहाँ पर अपनी पार्टी में इनवाइट करती है कि आप यहाँ पर आकर के यहाँ पे अपना यहाँ पर हमें अपने गाने सुनाइएगा परफॉर्म कीजिएगा। लेकिन चूंकि घर वालों को इस तरह के छोटे आदमी का इतना ज्यादा मेल जोल अपनी घर के साथ में या घर वालों के साथ पसंद नहीं आता इनकी हस्बैंड को मतलब इनके पति को निर्मला जी के, तो बस वहीं से कहानी मोड़ लेती है। लेकिन चूंकि बेटी को प्यार हो जाता है सेतु के साथ तो कहानी में एक अलग ही मोड़ आते हैं और ये सारे मोड़ आपने अपने आप देखे हैं। और कहानी को दोहराने की

अभी आपको मैं उस दौर में जरूर ले जाना चाहूंगी जब आपने इस कहानी को जरूर देखा होगा, दोबारा आप उस चीज को महसूस भी करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं हमारे साथ कौन कौन जुड़ी हैं। देखिए, हमारे साथ जुड़ी हैं अब्दुल गफ्फार जी, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, और इनके साथ हैं, देखिए इनका तखल्लुस कितना अच्छा है, अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, फिर है अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, और भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी जी। फिर हमारे साथ जुड़े हैं देखिए हैं चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, और इन्होंने लिखा है सुनो हसीना काजल वाली के बारे में लिखा है, वो तो गाना मैंने आपको सुना दिया सर। फिर हमारे साथ हैं गए हैं अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश कुमार भावसार और सनी भावसार, सुर संगम रेडियो श्रोता संघ, और ये है विरमगाम गुजरात से हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिर है पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर, दलेश्वर नगर, नरवील, जिला बुलढाणा से हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और हमारे साथ हैं सहारनपुर, कुमार हैड़ा से सैयद मसरूर, शाइना हसन अक्सा, अदीब नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम, और इन्होंने भी फिल्म के बारे में बात की है, शुक्रिया। और हमारे साथ बस आप लोग बने रहिए, अच्छा लगता है। देखिए ये कौन है, ये है आपको हमारी प्रस्तुति सुंदर लगी उसके लिए शुक्रिया, ये है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, रघुनाथपुरा, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान से, तो शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हम बात कर रहे हैं 1992 में रिलीज हुई फिल्म संगीत की, आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक और गाना।

दोस्तों हम बात कर रहे हैं संगीत की, और अगर इस फिल्म के बारे में बात करें तो कहते हैं कि हर फिल्म की कीमत उसकी कमाई से तय नहीं होती, और इस फिल्म को अगर बॉक्स ऑफिस में इसकी कमाई की बात करें तो ये असफल फिल्मों की श्रेणी में आती है, लेकिन इस फिल्म का जो एक गीत है वो पुरस्कारों तक जरूर पहुंचा। मैं बात कर रही हूँ ओ रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, इस गाने की। इस गाने में ना अनुराधा पौडवाल को 1993 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका की श्रेणी में नामांकन मिला था, और माधुरी दीक्षित के लिए भी यह फिल्म खास थी क्योंकि इन्होंने इसमें दोहरी भूमिका निभाई थी। और इसके बाद में उन्होंने अगले ही साल एक और फिल्म में फिर से माँ बेटी की भूमिका निभाई है। तो आज हमने याद किया, फिल्म संगीत के बारे में हमने बातें की, और इस फिल्म के गानों के जरिए इस फिल्म को दोबारा आप तक लाने की कोशिश हमने की, लेकिन अपनी उनकी धुनें समय के साथ अपनी जगह बना लेती हैं, जिनकी धुनें हमारे दिल में जगह बना लेती हैं, है ना। संगीत भी शायद ऐसी ही फिल्म है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक लड़की अपनी आवाज के सहारे अपनी आवाज अपनी पहचान तलाश रही है, और हमें आखिर में

बात याद रह जाती है कि आवाज को रास्ता दिखाने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, अगर सुर सच्ची हो तो संगीत अपना रास्ता खुद बना लेता है, और ये इस फिल्म के गीतों के जरिए हमें बखूबी समझ में आता है। तो आज हमने याद किया 1992 की फिल्म संगीत को, और एक ऐसी फिल्म जिसकी कहानी भी सुरों से कही गई और रिश्ते भी, और शायद इसीलिए इतने साल बाद भी जब इसका कोई गीत बजता है तो लगता है कुछ धुनें पुरानी नहीं होती, बस हमारी यादों में थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है।

दोस्तों आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से कार्यक्रम और इसमें आज हमने सुना फिल्म संगीत के बारे में, हमने अपनी यादों को ताजा किया। ये कार्यक्रम आपने अपनी रेडियो हम सफर सोनाली के साथ तय किया। अब दीजिए मुझे इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में कृषि क्षेत्र में सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने मलेशिया के कृषि मंत्री मोहम्मद बिन साबू के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत के जरिए करने पर सहमति जताई। म्यांमार के कृषि मंत्री मिन नोंग के साथ

0: बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली वार्षिक फिनटेक सम्मेलनों में से एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का सातवां संस्करण मुंबई में चल रहा है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है पोटेंशियल टू इम्पैक्ट, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय, आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक एआई एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन सुहिनकांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेकणी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, VIP और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, BLO और चुनावी साक्षरता क्लब ELC के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
5: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव

0: हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्मभूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलुक संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमिलगा वित्तीय कषगम टीवीके के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंतकम से मरगथम कुमारवेल को मैदान में उतारा है। विपक्षी डीएमके ने मधुरंतकम से पारंथमन और धरपुरम से एस सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निरीश्री।
1: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय

0: नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनीता विलियम से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधु सिद्धार्थ, सुप्रिया और रोशनी एंड ने दो दो गोल किए। भारत 12 सितंबर को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: द्रेसोफेंटिस नेशनल न्यूज सर्विस 24x7 प्रोग्राम आकाशवाणी दिल्ली का नंग यानी नेट पिन मीडियम वेव दोनों एफएम के दिव आकाशवाणी करगिल वास्पुत सुतंगिस नमेट सुमशु सुसु कसता एनसीईआरटी ना सीआईईटी बस पी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग प्रोजेक्ट नसत।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। करते हैं शुरुआत गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी द्वारा भेजे गए सुविचार के साथ। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। सचमुच कैसे नादान हैं हम सब। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। आपके सुविचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच है श्रोता मित्रों, जीवन को जीने का हमारा दृष्टिकोण हमेशा संतुलित और परिपक्व होना चाहिए। सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। ग्राम बंगला माटिया बालूस से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं, जल है तो कल है, वृक्ष है तो फल है। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी ने। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी और सुल्तान अंसारी, और शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज के प्रेरक प्रसंग में एक बार फिर से हम याद करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर को जब अंग्रेजी शासन का शिकंजा भारत पर कसता जा रहा था। हम आजादी के बहुत से अमर शहीदों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम तीन ऐसे नौजवानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, लगभग नहीं के बराबर। मित्रों, अगर मैं कहूं कि मात्र 18, 19 या 22 साल के तीन आजादी के दीवाने नौजवान अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित सरकारी भवन में घुस

0: गए थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? असंभव सा लगता है ना, लेकिन ऐसा हुआ। वे तीन जवान थे, बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। उन दिनों कोलकाता में अंग्रेजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दफ्तर था, जो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। ये ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी वहीं बैठते थे। ये 8 दिसंबर 1930 की घटना है। सामान्य दिन था। अंग्रेज अधिकारी अपने दफ्तर यानी राइटर्स बिल्डिंग में आ चुके थे और अपना काम कर रहे थे। महत्वपूर्ण जगह होने के कारण वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुरक्षा का घेरा तोड़कर बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता उस भवन में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग दोपहर की बात है, वे तीनों युवा क्रांतिकारी भवन में घुस गए। उस दफ्तर में कई भारतीय भी काम करते थे, इसलिए उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों जैसा पहनावा पहना और अंदर प्रवेश किया। उनके निशाने पर थे लेफ्टिनेंट कर्नल एन एस सिम्पसन, जो जेलों में भारतीय राजनीतिक बंदियों के साथ कठोर व्यवहार के लिए कुख्यात माने जाते थे। और देखते ही देखते तीनों ने लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन पर गोली चला दी। कर्नल की वही मृत्यु हो गई। इसके बाद वही हुआ जो आमतौर पर होता है, राइटर्स बिल्डिंग के अंदर ही ब्रिटिश पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। तो श्रोताओं, आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वे तीनों वहां से निकलने में सफल हुए? इसका उत्तर है नहीं। उन्होंने प्रण कर लिया था कि किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। वे समझ गए थे कि अब बच निकलना लगभग असंभव है। तो नवजवान बादल गुप्ता और बिनॉय ने स्वयं को गोली मार ली। बादल गुप्ता की वहीं पर मृत्यु हो गई। बिनॉय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1930 को उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके साथी दिनेश गुप्ता घायल अवस्था में पकड़े गए। उन पर मुकदमा चला और 7 जुलाई 1931 को अलीपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। और अब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश ने इन तीनों की स्मृति को कैसे जीवित रखा। कोलकाता के बेहद प्रसिद्ध डलहौजी हाउस का नाम बदलकर बीबीडी बाग यानी बादल, बिनॉय और दिनेश रखा गया और एक स्मारक बनाया गया। श्रोताओ, एक बात बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि हम इन क्रांतिकारियों के साहस और बलिदान को आभार के साथ याद करते हैं, लेकिन हिंसा को जीवन का रास्ता नहीं मानते। हम बस उस दौर के इतिहास को उस समय के संदर्भ में समझते हैं। तो श्रोताओ, जब हम बीडीडी बाग का नाम सुने तो केवल उसे कोलकाता की एक जगह समझकर नजरअंदाज न कर दें। हम जरूर याद करें इन क्रांतिकारी युवाओं को, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आजादी को केवल एक विशेषाधिकार की तरह ही नहीं, बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह भी देखें। और जिन्होंने देश के लिए अपना आज दे दिया, हम उनके बलिदान को याद करके अपने आज को बेहतर बनाएं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। आप 8800044059 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी सीआईटी एनसीईआरटी को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बरसात और मेंढक। इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पशु पक्षियों और संपूर्ण जीव जगत का ख्याल रखना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए।
1: बरसात और मेंढक।

0: लड्डू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।

0: हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ।
1: कमली और सोमारू चले घास लेने।
2: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
3: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
2: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
3: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
2: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
4: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
4: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
5: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
6: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेंढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ,
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में रूस के एक भालू से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया गया है और ये संदेश दिया गया है कि हमें

0: अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पूरी तरह से पहचानना चाहिए।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहाँ के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते, वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही। लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।

0: दोस्तों जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
1: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
0: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।
1: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
0: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था?
1: बात स्पष्ट है। उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
0: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
1: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
0: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
1: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
0: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: और अब सुनते हैं एक सुंदर गीत,
3: फूल सी गुड़िया हमारी।

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: दरियंतेस एनसीईआरटी नासीआईईटी बस पी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग यानी नटपिन मीडिया मोहित दोनों एफएम एक जीव आकाशवाणी करगिलिन वास्पतो सोतसुम छेनु कसता उर्दू सर्विस प्रोग्राम आकाशवाणी दिल्ली के नजर रेबित रिलेला डंबाजत।

3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर सुनिएगा फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। 3:30 हम पेश करेंगे प्रोग्राम अंदाज़ी नजर। आज इस प्रोग्राम में सुनिएगा एक मुबाहिसा, मौजू है उर्दू फिक्शन में हिंदुस्तानी असातीर। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामिन ने था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

भी सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। सामिन आपको बता दें, कुछ

0: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, शगुफ्ता यास्मीन से खबरें सुनिए। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मुश्तरका ज़रई तहकीक, टेक्नोलॉजी और इख्तरा के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने की खातिर मलेशिया, तैमूर लेस्ते और म्यांमा के अपने हम मनसबों के साथ दोतरफा मीटिंगें की हैं। आलमी सेहत तंजीम के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेसिस ने जच्चा बच्चा की सेहत देखभाल के सिलसिले में भारत की नुमाया हसूलियाबियों की सताइश की है। उन्होंने तिमोर लेस्ते में सेहत के मरकजी वजीर जेपी नड्डा से मुलाकात की। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। क्रिकेट में आज शाम दुबई में खवातीन एशिया के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा और यूएस ओपन में आज मर्दों के सिंगल्स का सेमीफाइनल खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के अपने हम मनसबों के साथ आला सतही दोतरफा मीटिंगें की। नई दिल्ली में ज़राअत और जंगलात से मुतालिक नवें आसियान भारत वजारती मीटिंग के मौके पर कल ये मीटिंगें हुई। मलेशिया के ज़राअत और खुराक की यकीनी फराहमी के वजीर मोहम्मद बिन सापू के साथ मुलाकात के दौरान जनाब चौहान ने मालूमात, महारत और बेहतरीन तौर तरीकों के तबादले की अहमियत पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने मुश्तरका ज़रई तहकीक, टेक्नोलॉजी और इख्तरा के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने पर भी दिलचस्पी का इजहार किया। इस दौरान जनाब चौहान ने म्यांमा के ज़राअत के वजीर मिनोंग के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने कहा कि ज़राअत और उससे वाबस्ता शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने की खातिर दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमतनामे आखिरी मरहले में हैं। आलमी सेहत तंजीम WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेसिस ने तिमोर लेस्ते के दिल्ली में जनूब मशरकी एशिया के लिए WHO के इलाकाई कमेटी के 79वें इजलास के मौके पर सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा से

0: एशिया कप के सेमीफाइनल मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। भारत टूर्नामेंट में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगा। हरमनप्रीत कौर की टीम ने थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान को आसानी के साथ हराकर सभी 3 ग्रुप मैच जीते हैं। ग्रुप बी में बांग्लादेश श्रीलंका के बाद दूसरे मकाम पर है। भारत ने बांग्लादेश के साथ 24 T20 मैचों में से 21 मैच जीते हैं और भारत की टीम पिछले 8 मैचों में बांग्लादेश के खिलाफ कोई मैच नहीं हारी है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ एशिया कप में 2018 में जीत हासिल की थी, जब उसने भारत को हराकर खिताब अपने नाम किया था। यूएस ओपन टेनिस में मर्दों के सिंगल सेमीफाइनल में 2 अमरीकी खिलाड़ियों बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो के दरमियान मुकाबला होगा। क्वार्टर फाइनल में 8वें नंबर के खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के सनसनीखेज मुकाबले में पिछली बार के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया था, जबकि टियाफो ने अपने हमवतन एलेक्स माइकलसन को शिकस्त दी। शेल्टन और टियाफो दोनों ही अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इधर खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में कल पिछली बार की चैंपियन आरियाना सबालिंका का मुकाबला 3रे नंबर की खिलाड़ी जेसिका पेगुला से होगा, जबकि 4थे नंबर की खिलाड़ी कोकोगॉफ कजाकिस्तान की एलेना रेबकीना से मुकाबला करेंगी। इसराइल ने स्लोवेनिया में अपना पहला सिफारतखाना खोल दिया है और यूरोपीय यूनियन के इस मुल्क के साथ रवाबित गहरे हो गए हैं। मकबूजा मगरबी बैंक में इसराइल की बस्तियां बसाने की पॉलिसी पर देरीना इत्तेहादियों के साथ रिश्ते खराब हो गए हैं। इसराइल के वजीर खारजा सिफारतखाने के इफ्तिताह के लिए जबुल जाना गए और इसको एक तारीखी दिन बताया। स्लोवेनिया के वजीर खारजा ने कहा कि इस सिफारतखाने से बातचीत और तआवुन के रास्ते खुलेंगे। और आखिर में खास खास खबरें पर फिर सुन लीजिए। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मुश्तरका ज़रई तहकीक टेक्नोलॉजी और इख्तरा के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने की खातिर मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के अपने हम मनसबों के साथ दोतरफा मीटिंगें की हैं। आलमी सेहत तंजीम के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेसिस ने सच्चा बच्चा की सेहत देखभाल के सिलसिले में भारत की नुमाया हसूलियाबियों की सताइश की है। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में आज शाम दुबई में खवातीन एशिया के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामाइन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश शक्ति फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। मौसीकार हैं आर डी बर्मन।

आप सुन रहे थे साजन फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया था नदीम शर्मन ने। आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज में अनीता फिल्म का नगमा, नगमनिगार राजा मेहदेली खान, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

सामने से जख्मी के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत प्रोग्राम अंदाज़े नजर।

मिलती जुलती हैं, वो भी बड़ी हैरत अंगेज हैं। बहुत बड़ा उनका इलाका तो नहीं है, लेकिन उनका जो कहना चाहिए कहानियां और जो इमेजिनेशन है, तस्वूर है, वो बहुत हैरत अंगेज है। तो हमारे यहाँ मोटे तौर पे जो हिंदुस्तानी माइथोलॉजी या हिंदू माइथोलॉजी से हम कहते हैं सनमियात, उसके लिए उर्दू में लफ्ज है, या सातीर भी इस्तेमाल होता है, उसमें तीन बुनियादी गॉड्स हैं, ब्रह्मा,

0: तो ये इस तरह सुनो है उसको।
1: ये कलीला और दिमना के नाम से अरबी में भी तर्जुमा हुई है ना, पैतंत्र
0: हुई है। तो ये जो मंजार हुसैन थे वो उनके की सोच आम फिक्शन निगारों से ज़रा अलग हटकर थी। और ये सिलसिला आप उनकी कहानियाँ देखिए, मसलन जैसे जर्द कुत्ता है उनकी कहानी है,
1: जी
0: आखिरी आदमी, उनको पढ़ने के बाद आपको ये लगता है कि भई ये कुछ अलग सा है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि इंतज़ार हुसैन ने जो शुरू किया वो उर्दू अदब के लिए बहुत अहम था, और उसका सिलसिला बाद तक चलता चला है। मसलन सलाम बिन रज़ाक़ की कहानी नदी,
1: जी
0: और बजूका सुरेंद्र प्रकाश
1: सुरेंद्र
0: की।
1: प्रकाश के बुजुर्ग का
0: तो आप एक लाइन है जो चलती चली आ रही है, और इंतज़ार हुसैन की कहानियां यकीनी तौर पर इस मरहले में सबसे ज्यादा अहम नजर आती है।
2: सलाम बिन लज्जा की के आपने बेजुका का बड़ा
0: नहीं
2: नदी,
0: बजू,
2: आपने नदी का जिक्र किया,
0: हाँ
2: बहुत ही अहम कहना चाहिए कि कहानी है जिसका बेस जो है उस्तूर है। उनके यहाँ कामधेनु एक अफसाना है,
0: जी बहुत अच्छा सुना है वो।
2: यकलव्य एक अफसाना है, और यकलव्य के अलावा श्रवण कुमार पर एक अफसाना
3: हाँ
2: है।
3: जी, तीन अफसाने हैं इस हवाले से उनके। एक तो आज का श्रवण कुमार है, दूसरा है एकलव्य, तीसरा अफसाना इसी की अगली कड़ी है, वो एक लव्य का अंगूठा।
1: अच्छा,
3: और ये
1: अंगूठा
3: तीनों में इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उस्तूर को न सिर्फ
2: इस्तेमाल
3: बयान
2: किया
3: किया
2: है
3: है, बल्कि आज के हालात से उसका तदाबुक पैदा किया है।
2: ये बहुत सही बात कही
0: ये यही सूरत नदी में भी है। नदी में तो उन्होंने कहीं ले जाके ग्रीक मैथोलॉजी को भी उसमें शामिल कर दिया है, और आज की जो सिचुएशन है, कंटेम्प्रेरी जो सिचुएशन है, उसमें अगर आप नदी को पढ़िए तो आपको लगेगा कि तो उन्होंने आज की बात कही है, पीछे से लाके उन्होंने मामला को रखा है।
2: असरार गांधी साहब, आपने जो बात बहुत सही कही कि ये वो फनकार हैं जो उस्तूर को आज के सियाक में बामानी बना रहे हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
2: और देखिए, अगर ये नहीं हो पाता तो फिर वो फन कहाँ बना, अदब कहाँ बना, और फिर हमारी आपकी दिलचस्पी का मौजू कहाँ रहा। और एक नजरिया तो ये भी सामने आया है कि जो हमारा अदब आलिया है उसका जेनेसिस, उसकी जड़ें भी इन्हीं असातीर की दुनिया में है। यानी जिंदगी के इर्तका का एक पहला सिरा अगर असातीर हैं, तो उसका आखिरी आज का सिरा जो कभी खत्म नहीं होने वाला है वो आज का अदब है। आज की जो तख्लीकी हिस्सियतें हैं, उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं, वो यहां से वहां तक ये दोनों सिरे हैं। और दोनों जगह वो यही रहा है कि तखयल की कार फरमाई है। आज के अदब में तखयल की उतनी कार फरमाई नहीं है जितनी कार फरमाई असातीर के जमाने में थी, और असरार गांधी साहब जैसा कि फरमा रहे थे दास्तानों के दौर में थी। लेकिन आज बगैर तखय्युल के कोई फनकारा वजूद में नहीं आता। अहमियत इस बात की है कि आज का तखय्युल ताकत अखज करता है सदियों पुराने असातीर के वजूद में। यही तो वजह है कि नदी लिखी गई, यकलव्य लिखा गया, आज का यकलव्य लिखा गया। और भाई वो नदी जो कामधेनु जो है, कामधेनु जिसकी कहानी लिखी गई, तो ये है। आपको क्या लगता है अबू बकर अब्बास साहब?
3: जी बिल्कुल, देखिए इनका यहाँ तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ उर्दू में और लोगों ने भी बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। मसलन इंतज़ार हुसैन के यहाँ देखिए, ये सिर्फ हिंदुस्तानी असातिर की जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर उसमें बौद्ध की असातिर भी आती है। तो उनके जो अफसाने खासतौर से कछुए हैं या पत्ते हैं या वापस है, तीनों में जो है बौद्ध जो जातक कहानियां होती थी वो जो हैरत अंगेज तौर पर उनका बयानिया है मशहूर करने वाला। तोते की जबानी कहानी सुना रहे, तथागत कहीं पे जो है वो कुत्ते की जबानी सुना रहे हैं, तो इस तरीके से वो सारी चीजें बहुत खूबसूरती से बयान किया है।
2: बहुत सही कहा।
3: इसके अलावा अगर खालिस हिंदुस्तानी, जाहिर है ये सारी हिंदुस्तानी ही मैथोलॉजी है, तो उसमें हिंदू भी है, बौद्ध भी है, दूसरी चीजें भी हैं, इलाकाई ये भी हैं, तो जो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से उनकी जो कहानियां हैं तो इस तरह की तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां होती
2: बहुत
3: हैं।
2: सही फरमा रहे हैं आप। और देखिए, ये जितने असातीर हैं अदब में, कभी तलमी बनकर, कभी तशबी, कभी इस्तियारा, कभी अलामत, इन सूरतों में अदब का हिस्सा बनते हैं। और ऐसे फनकारे भी हैं जो पूरी तरह किसी उस्तूर में रचे बसे हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि उस उस्तूर के बतन से वो आज का फिक्शन पैदा हो रहा है। ये भी होता आया है हमारे यहाँ। और इसमें

0: किस शक्ल में बाहर निकलेगा ये वो खुद नहीं जानते, लेकिन जब वो निकलता है तो मालूम है कि वो तमाम उसका तना, उसकी शाखें, उसकी पत्तियां और उसकी कोंपलें बस वही हैं।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने जो इस्लामी उस्तूर लिखे हैं तो उनकी जबान, उसका लहजा, डिक्शन बिल्कुल वैसा ही रखा है।
0: जी
1: जो हिंदू असातिर है तो उसमें हिंदी के अल्फाज बहुत सारे आए हैं, हिंदी तर्ज तहरीर है, उस तरीके से संस्कृत के बहुत आए हैं। वैसे जो बुद्धिस्ट असातिर उन्होंने लिए हैं तो उसमें बिल्कुल वही तथागत वाला तरीका इस्तेमाल किया कि किस तरीके से कहानियां सुना रहे हैं। जी जी जी बिल्कुल, तो उनका तर्ज उसलूब हर उस्तूर के साथ बदलता जाता है, तो ये बड़ी खूबी है उनकी।
2: मेरे जहन में एक बात आती थी कि इंतजार हुसैन पाकिस्तान में बैठ के लिख रहे थे और कुरतुल हैदर पाकिस्तान से कुछ परेशान होकर वापस आ गई थी, तो क्या जो मकामी हालात होते हैं, मकामी समाजियात होती
3: असर अंदाज
2: है, क्या
3: होते
2: उसका
3: हैं।
2: असर भी तहरीरों पर पड़ता
3: बिल्कुल
2: है?
3: बिल्कुल होता है ना कि वहां की तहजीब अलग है, हमारी तहजीब अलग है, और ये जो सिचुएशन अलग अलग है ये लिखते वक्त दर आती है।
2: क्या ये हो सकता है कि इंतजार हुसैन जानबूझ के इतना वाजे और इतना कंक्रीट नहीं लिखते हैं, टेक्निक उनकी ऐसी है जितना कुरतुल हैदर हमारे यहाँ बाद का जो नाविल है उनका, चांदनी बेगम वगैरह, उसमें तो बहुत ही ज्यादा एक तरह का पॉलिटिसाइज और पॉलिटिकल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा है वो, और लगता है किसी तरह के पसंद का लिखा हुआ नाविल है ये, तो इसका शायद असर पड़ता है।
0: मैं अर्ज करूँ अगर आप इजाजत दें।
2: जी जनाब।
0: इंतजार हुसैन के यहाँ ये जो फन का तख्लीक का अमल है ये ओढ़ा हुआ नहीं है,
2: बड़े फनकार हैं।
0: ओढ़ा हुआ अगर होता खुदा न खास्ता तो फिर वो बात पैदा होती कि भाई खारिज की हालात को देख रहे हैं, सियासत को देख रहे हैं और मसलहत क्या कहती है और रास्ते गुफ्तारी हम नहीं कर सकते तो चलिए इसकी आड़ ले लेते हैं। ये भी कोई इसमें खराबी नहीं है, ऐसा हुआ है वहां भी। भाई अनवर सज्जाद ने यही तो किया, हमें लगता है कि अनवर सज्जाद ने बहुत ही शौरी तौर पर किया है।
3: कोंपल में जैसे
0: इंतजार हुसैन का इनफराद ये है कि वो उनके यहाँ चीजें ओढ़ी हुई नहीं है, जैसा मैं अर्ज किया कि वो बातिन में जज्ब कर चुके और फिर वो खुशबू उनके फूट रहा है।
1: इनके अलावा हमारे यहाँ और भी हैं जिन्होंने अफसाने लिखे हैं, उस्तूरी कहानियां लिखी हैं, मसलन सुरेंद्र प्रकाश जो है इन्होंने कई अफसाने बहुत अच्छे लिखे हैं, खासतौर से बाज गोई की है। तो बाज गोई को जिस तरह से इमरजेंसी पे उसका इंतबाह किया और उसको पिछले जमाने में ले गए बल्कि शहरोजी के हवाले से ये किया है तो वो तो बेहद अच्छी कहानी है, लगेगा कि आप पिछली दुनिया में पहुंच गए हैं। या खालिद अशरफ साहब कुरतुल ऐन हैदर का जो जिक्र कर रहे हैं तो उनका एक अफसाना भी है जिसमें बाज़ाहिर वो साइंस फिक्शन लगता है लेकिन उसमें उस्तूर है। उस्तूर इस तरीके से है रोशनी की रफ्तार, जो उनका अफसाना तो वो कदीम मिस्र में पहुंच जाता है वो
2: टाइम मशीन में बैठ
1: और फिर वहाँ उस उस्तूर को बयान किया जो मिस्री उस्तूर है। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उस्तूर के हवाले से चार पांच मुल्क हैं जो बेहद सर्वतमंद है, एक तो यूनान है, रूम है, खुद हमारा हिंदुस्तान है और जापान है। वैसे तो बहुत हर मुल्क का, हर कौम का, हर तहजीब का अलग अलग वो होता है और हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा है। अरविंद डिगा ने जो उनका जो नॉवेल था द वाइट टाइगर्स तो इसकी इब्तदाई यहाँ से करते हैं कि हमारे यहाँ तरीका ये है कि किताब शुरू करने से पहले भगवान की अर्चना करते हैं। तो मेरे सामने कई मतबादिल हैं, एक मुसलमानों का खुदा है जिसकी अर्चना करें, या फिर एक ईसाइयों के तीन खुदा है जिसकी अर्चना करें, या फिर हिंदुओं के 3,65,00,000 हैं। तो अगर ये मान लीजिए कि हर भगवान से कोई ना कोई स्तूर जुड़ा हुआ है तो इस एतबार से देखें तो यूनान और रूम से ज्यादा पावरफुल जो है और ज्यादा सर्वतमंद हमारे हिंदुस्तानी असाती है, बहुत ज्यादा।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो ज्यादा फैला हुआ है
1: जी,
3: ज्यादा वसी है तो वो कहीं बेहतर है। ये तो हिंदुस्तान का हमारा जो माशरा है और सब कुछ बहुत वसी है, बहुत फैला हुआ है।
2: सर नंद किशोर विक्रम साहब ने भी एक नॉवेल लिखा था जो ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ, 19वां अध्याय, वो महाभारत के बैकग्राउंड में पार्टीशन से, चूंकि पार्टीशन को उन्होंने बहुत देखा था और पार्टीशन में सफर भी किया था उन्होंने, वो भी एक अच्छा नावल है। फिर उनका हुसैन उलक साहब का एक नावल आया अमावस में ख्वाब, उसमें जो मरकजी किरदार है इस्माइल वो कोकाफ के पार भी देखता है। इसी तरह बानो कुर्सी का नावल राजा गीत,
3: खालिद अशरफ साहब बताएं कि ये जो हिंदुस्तान में इंतजार हुसैन के बाद जो उस्तूर का एक सिलसिला चला जिसका भी जिक्र हम लोग कर रहे थे, क्या ये इंतजार हुसैन का इफेक्ट है या ये एक फितरी बहाव के तहत ये आया है?
1: नहीं, हमारे यहाँ ये लोग लिख रहे थे ना, बेदी लिख रहे थे, ग्रहण है, लाजवंती में उस्तूर है, अपने दुख मुझे दे दो में है, हिंदू वगैरह का जो चांद का है। खाली साहब एक बहुत अच्छा अफसाना है मुझे याद आ गया अभी, जो गिंदरपाल साहब का इफरीत, उसमें रावण का उस्तूर है
2: रावण का है ना।

0: की कहानी है कि रामलीला खेला जा रहा और किस तरह उसमें रावण
1: हाँ
0: को
1: वो बीवी
0: दहशतगर्दी से
1: बीवी जो
0: जोड़ने
1: है,
0: की कोशिश की है।
1: हाँ वो बच्चा कहता है कि माता जी को साथ क्यों नहीं लाए रामलीला देखने लिए, कहते हैं उन्होंने तो रावण ऑलरेडी बहुत देखे हुए हैं, वो है अफसाना बिल्कुल जदीद उससे जुड़ता है। लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता है इसमें कि कुलतुरन हैदर और इंतजार हुसैन के बाद उर्दू में जो माइथोलॉजी जिसे कहते हैं अस्तूर, मेन स्ट्रीम में नहीं आई।
2: आप इजाजत दें तो मैं ये अर्थ करूं, अभी इफरीत का हम लोग जिक्र कर रहे थे, मेरे नजदीक इफरीत जो है वो कंट्राइव बन पा रहा है, उस तरह से उसकी जो एक नामियाती वजूद होना चाहिए फनपारे का, वो इफरीत में नहीं मिलता और यहां वो कमजोर पड़ जाते हैं, जबकि हमारे जोगिंदरपाल साहब बहुत बड़े फनकार हैं और वही अजीब चीजें लिखी, लेकिन इफरीत में जरा सा वो बात बन नहीं
0: हाँ
2: पाई है।
0: मतलब वो उसको इस तरीके
2: किसी
0: से,
2: सोचे समझे ढंग से आप उसको 2+2=4 की तरह इफरीत को इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: एक अफसाना उनका बहुत अच्छा ग्रंथी भी है जिसमें उन्होंने सिख जो मोटिव्स हैं और सिख जो सिंबल्स हैं उनको भी बड़े खूबी के साथ इस्तेमाल किया है।
2: जी हाँ जी हाँ
1: जोगिंदरपाल साहब जाहिर है कि बड़े
0: ये
1: राइटर
0: जो
1: थे हमारे।
0: गुफ्तगू हो रही थी कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा उस्तूरी अफसाने नहीं लिखे गए, मुझे लगता है कि काफी लिखे गए हैं, तो खुद सलाम रजाक की देखिए
2: अभी
0: कितने
2: जिक्र
0: अफसाने हैं, उसका
2: आया,
0: जिक्र आया, आप
2: अभी
0: लोगों ने
2: जिक्र आया।
0: किया। मुमताज श्री के 5-6 अफसाने हैं, सरस्वती जी पे हैं, शिव जी पे हैं, बुद्धिस्ट पे हैं, इसके अलावा और बहुत सारे हैं, जोगिंदर पाल हैं ये लिख रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे यहाँ लिखेंगे। सूर्य प्रकाश है, इनके यहाँ उसके भी
2: देखिए
0: अफसाने मिल
2: सूर्य
0: जाते
2: प्रकाश
0: हैं
2: का वनवास 81,
0: जी।
2: वनवास 81 में वो राम का ही वनवास है और आज के जो सूरत हाल है उस पर उसका इंतबाक हो रहा है। राम तो आ गए थे वनवास के बाद लौट कर यहाँ, लेकिन सुरेंद्र प्रकाश के यहाँ राम लौट कर
0: जाते
2: नहीं
0: हैं वो जी
2: आते,
0: बिल्कुल
2: और राम राज्य की जो एक मिसाली मुमलेकत का तस्वुर है वो उसी वक्त हकीकत बन सकता है जब राम लौट आते। राम नहीं आ रहे हैं तो वो मिसाली तस्वुर, उसके बरक्स जितनी खराबियां हो सकती हैं वो इस कदर हैं कि राम न आना बेहतर समझते हैं।
0: बिल्कुल इसी इसी मौजू पे श्री रामचंद्र जी को ही उस्तूर बना करके सैयद मोहम्मद अशरफ ने एक अफसाना लिखा, अफसाने का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी यही यहाँ आना चाहते हैं लेकिन फिजा देकर के वो बहुत घबराते हैं।
1: अच्छा जी ना बड़े साहब, एक चीज और है, ये जो आजकल मैजिक रियलिज्म बहुत इस्तेमाल हो रहा है हमारे यहाँ और लेटिन अमेरिका से आई थी 70s में ये टेक्निक, क्या ये कुछ मैजिक रियलिज्म और माइथोलॉजी, क्या इनमें कुछ चीजें मिलती है, कुछ मुश्तरक है जैसे
2: देखिए
1: मुझे
2: ये
1: लगता है कि
2: मैजिक रियलिज्म उस तख्लीकी रिवायत से जुड़ी हुई है जिसे हम उस्तूर साजी का अमल कहते हैं।
1: जी।
2: यहाँ उस्तूर साजी हो रही है लेकिन आज के सियाक में हो रही है, अपनी जात के सियाक में हो रही है, और इस बस यही अमल है वहाँ जो दूसरी सियाक में हो रहा है। आप सही कह रहे हैं
0: बिल्कुल, क्योंकि वाकयात और
1: क्रिश्चियन
0: किरदार
1: माइथोलॉजी
0: जो
1: का
0: है
1: उसमें
0: वो बिल्कुल
1: काफी जी
0: उस्तूर जैसे ही है,
1: अंदर
0: मुहय्यरुल उकूल है, ना काबिल
2: जी
0: यकीन है ना,
2: हाँ
0: मा
1: हाँ
0: फौकुल फितरत है,
2: जी जी
0: और
2: ख्वाब उसमें
0: मैजिक
1: ख्वाब
0: रियलिज्म में भी
1: ख्वाब है
0: तकरीबन,
1: मिथ्स
0: लेकिन वो
1: है
0: तो टेक्निक अलग है,
2: जी।
0: मैजिक
2: अब
0: रियलिज्म
2: देखिए
0: हो या
2: हमारा है
0: सरियलिज्म हो।
2: अब्जर्ड आर्ट का एक पूरा दबिस्तान रहा,
1: जी
2: चाहे वो अब्जर्ड ड्रामा हो चाहे अब्जर्ड फिक्शन हो, तो ये अब्जर्ड फिक्शन बाज़ा कभी कभार तो हमें परेशान यूं करता है कि जो हमारे असातीर पर मबनी फन पारे हैं।
3: दरें तेज आकाशवाणी दिल्ली का ना उर्दू सर्विस प्रोग्राम लंगन इन पिन मीडियम वेव दोन एफ एम एक दियो आकाशवाणी करगिल इन वास्पो तुस तो दश बिशे नुक कसता संदेश टू सोल्जर आकाशवाणी दिल्ली का ना रिले बेत रिले लाटांग बाजेद।

चार बज चुके हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी

0: में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
1: जर्नी रिफ्लेक्ट दिस फिलोसॉफी।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसरो ने हर मिशन और हर सफलता के साथ अपनी प्रतिष्ठा बनाई है और अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों में भारत को गौरवपूर्ण स्थान दिलाया है। भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान 3 ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बनाया और आदित्य L1 सूर्य के रहस्यों को उजागर कर रहा है। उन्होंने वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और वर्ष 2040 तक किसी भारतीय को चंद्रमा पर भेजने के भारत के लक्ष्य पर भी बल दिया। श्री मोदी ने फ्रांस और दुनिया को भारत की अगली अंतरिक्ष यात्रा में सहयात्री बनने के लिए भी आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई से रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा
3: संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों और भारत तथा विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण मुंबई में जारी है। ये दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली वार्षिक फिनटेक सम्मेलनों में से एक है। सम्मेलन का विषय है पोटेंशियल टू इम्पैक्ट एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते
0: ये भारतवर्ष कितना सुंदर है ना, वो वादियां, वो पहाड़, वो फूल पत्ते, वो मिट्टी और उसकी महक, ये देश, ये लोग, वो प्रांत, वो भाषा, वो जौहर, वो जलवा, वो प्रसिद्ध अभिनेता, वो प्रसिद्ध खिलाड़ी, वो उच्च स्तरीय, एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि बस दुनिया कहने पर विवश हो जाती है कि भारतवर्ष इस पृथ्वी का सबसे अच्छा देश है। हम जैसे भी हैं हम एक हैं, हम जैसे भी हैं इस मिट्टी के बच्चे हैं, इस मिट्टी से हमें इतना लगाव है, इतना प्यार है जो शायद ही हम किसी और से करते हों। इस फिजा में, इस सभा में वो खुशबू है जिसकी बदौलत हम शान से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, और इसी आन बान और शान को दुरुस्त रखने के लिए सरहदों पर और इस भारतवर्ष के अंदर हमारी सेनाओं का प्रमुख रोल है। वो पैरा सर्विसेज हो, पैरा मिलिट्री फोर्सेज हो या आर्म्ड फोर्सेज हो, द पीपल इन यूनिफॉर्म प्रोटेक्ट आवर कंट्री। और आज हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में ऐसे ही एक जाबाज अफसर मौजूद है हमारे साथ, सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर, जो आज हमसे SSB की गाथा, उसके गुण और अपनी उस शौर्य की गाथा शेयर करेंगे। क्योंकि SSB, सशस्त्र सीमा बल, एक ऐसी फोर्स है जिस पर दायित्व है भारत की सुरक्षा का। आइए मिलकर स्वागत करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर का। बहुत बहुत स्वागत है आपका
4: जी। बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड इवनिंग। मैं सैयद अफसर, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सबसे पहले मैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक महोदय तथा आकाशवाणी FM रेनबो का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मंच पर

0: उपस्थित होकर अपने सेवा अनुभव और अपनी यात्रा साझा करने का अवसर प्रदान किया। मेरे लिए यह अवसर एक इंटरव्यू नहीं बल्कि देश के श्रोताओं से सीधा संवाद करने और अपने अनुभवों के माध्यम से युवाओं तथा देशवासियों तक कर्तव्य, साहस और राष्ट्र सेवा का संदेश पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर के लिए मैं आकाशवाणी FM रेनबो और पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूं।
1: आपकी आवाज सुनकर मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में लोगों को बहुत ही उत्साह, एक गर्व महसूस किया गया होगा। आप पुलिस गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं और दो खास ऑपरेशंस जिनकी हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले आज इस प्रोग्राम में, और वो है पिथौरागढ़ और जमुई में जो दो ऑपरेशंस हुए, वो बड़े खास और इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस थे। मैं चाहूंगा कि आप अपनी जुबानी उन ऑपरेशंस के बारे में बताएं।
0: जी बिल्कुल, मैं अभी जमुई में हुए ऑपरेशन के बारे में आपको कुछ प्रकाश डालूंगा। उस ऑपरेशन की पूरी जानकारी काफी विस्तृत है और यह कई फेजेस में कंडक्ट किया गया था। 11 फरवरी 2021 मेरे सर्विस कैरियर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दिन था। हमें इंटेलिजेंस प्राप्त हुई थी कि लखीसराय जिले के जंगल क्षेत्र में नक्सलियों का एक सशस्त्र दस्ता देखा गया है और उनके लिए आसपास के क्षेत्रों से भोजन सामग्री पहुंचाई गई है। प्राप्त सूचना को वेरीफाई करने के बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। हमने 10-11 फरवरी 2021 की मध्य रात्रि के दौरान अपना मूवमेंट शुरू किया। क्षेत्र की ज्योग्राफिकल कंडीशंस काफी चुनौतीपूर्ण थी, इसलिए ऑपरेशन में पेशेंस, एंडोरेंस और सतर्कता की विशेष आवश्यकता थी। ऑपरेशन के दौरान प्राप्त एक अन्य इनपुट के आधार पर परिस्थितियों के अनुरूप हमारी टीम ने अपनी योजना में आवश्यक बदलाव करते हुए आगे मूवमेंट किया। 11 फरवरी की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास हमारी टीम पर अचानक भारी मात्रा में फायरिंग शुरू हुई। हमने स्थिति का असेसमेंट करते हुए जवाबी कार्रवाई की। एंगेजमेंट का कुछ समय तक रुक रुक कर जारी रहा। इसके बाद एरिया की सिस्टमेटिक सर्च की गई। इस कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण नक्सली कैडर मनसा कोड़ा जोनल कमांडर को न्यूट्रलाइज किया गया तथा कुछ अन्य कैडर के घायल होने की जानकारी बाद में प्राप्त हुई। साथ ही साथ कुछ हथियार, गोला बारूद एवं अन्य सामग्री जब्त की गई। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे संतोषजनक और महत्वपूर्ण बात मेरे लिए यह रही कि हमारी पूरी टीम सुरक्षित रही और किसी भी साथी को कोई इंजरी नहीं हुई। मेरे विचार से यही किसी भी ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता होती है। मिशन को प्रभावी ढंग से पूरा करना और अपनी पूरी टीम को सुरक्षित वापस लाना। लेकिन मैं इस पूरी कार्रवाई को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं देखता, यह पूरी टीम का कलेक्टिव एफर्ट था। हर व्यक्ति ने, हर कार्मिक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और सभी ने एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखा। हमारे लिए ऑपरेशन की सफलता केवल ऑब्जेक्टिव हासिल करने में नहीं थी, हमारे हर साथी का सुरक्षित रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उस दिन पूरी टीम का डिसिप्लिन, म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हमारी सबसे बड़ी ताकत रही।

तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आपने किया, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जब अचानक से फायरिंग शुरू होती है तो मन में पहला विचार क्या आता है? आपके मन में वो पहला विचार उस समय क्या आया जब एकदम से फायरिंग शुरू होगी? और खासतौर से मैं जानना चाहूंगा कि जो सिविलियंस होते हैं वो

0: कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि एकदम से फायरिंग शुरू हो गई और जवाबी कार्रवाई हुई. तो जब एकदम से फायरिंग शुरू होती है तो मुझे जहां तक कॉम्बैट की नॉलेज है कि हम गोलियों के सामने नहीं आते, हम एक कवर लेते हैं. एंड ऑफ कोर्स कवर लेने के बाद थोड़ा सा उस कवर के दौरान ही हम लोग एक समीक्षा करते हैं, एक ऑपरेशन हो रहा होता है, फायरिंग शुरू होगी, इसके लिए ट्रेनिंग हमें वाकई में पहले दी जाती है. पर फिर भी ट्रेनिंग और उस एक्चुअल मोमेंट में जब अचानक फायरिंग शुरू हुई, तो आपके मन में पहला विचार क्या था?
1: जी बिल्कुल, उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि सिचुएशन को जल्दी एसेस करना, एसेस किया जाए और टीम को कोऑर्डिनेटेड तरीके से रिस्पांस दिया जाए. ऐसी परिस्थिति में ट्रेनिंग बहुत काम आती है, आपके पास सोचने के लिए बहुत कम समय होता है, इसलिए ट्रेनिंग के कारण रिस्पांस इंस्टिंक्ट और डिसिप्लिन्ड हो जाता है. उस समय मेरा फोकस था कि फ्रंटलाइन को एस्टेब्लिश किया जाए, कम्युनिकेशन क्लियर रहे और टीम इफेक्टिवली रिस्पॉन्स कर सके.
0: ओके. तो उस समय जब आप आगे बढ़ रहे थे, तो आप क्या आपने एक क्षण के लिए भी कुछ विचार आया? उस समय होता है ना, एकदम से फायरिंग शुरू हो गई, दिस इज द रियल एक्शन, अब क्या होगा आगे पता नहीं. लोग परिवार के बारे में सोचते हैं, तरह तरह की बातें आती हैं जहन में, कुछ होता है?
1: जी, खतरे की स्थिति में डर या तनाव एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है, लेकिन ऑपरेशनल ड्यूटी में ट्रेनिंग आपको सिखाती है कि उस भावना को अपने डिसीजन मेकिंग पर हावी नहीं होने देना है. उस समय मेरे लिए पर्सनल फेयर से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरी टीम और मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. मैं करेज को इस तरह देखता हूं कि खतरे के बावजूद आप अपने कर्तव्य से पीछे ना हटें.
0: आप बीच में फायर डिसिप्लिन, आपने एक वर्ड यूज किया, तो मैं चाहूंगा कि इसका महत्व आप लोगों को समझाएं, वो लोग जो आपको अभी सुन रहे हैं, क्योंकि हमने डिसिप्लिन तो बहुत सुना है कि द पीपल हु आर इन यूनिफॉर्म वो डिसिप्लिन रहते हैं, लेकिन कॉम्बैट के वक्त फायर डिसिप्लिन, ये मैं चाहूंगा कि ये मैंने सुना तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सशस्त्र सीमा बल के फायर डिसिप्लिन का एक जो महत्व है वो लोगों को बताएं, और साथ ही साथ जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे थे, कितनी जल्दी आप लोग आपस में अपने साइन लैंग्वेज में ही बात करते होंगे शायद, एंड यू माइट नॉट बी काइंड ऑफ यू नो, एक वो भी एक महत्वपूर्ण एक अंश है कॉम्बैट का, लेकिन फायर डिसिप्लिन एंड ऑफकोर्स उसके बाद उसका जो महत्व है वो थोड़ा बताएं.
1: जी बिल्कुल, ऑपरेशन में किसी भी ऑपरेशन को सक्सेस बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फायर डिसिप्लिन का होना, और कम्युनिकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है. हमने ये इंश्योर किया कि आरटी के माध्यम से जो भी ऑर्डर्स पास किए जा रहे थे उन्हें सभी सेक्शंस तक क्लियर और काम तरीके से रिले करना आवश्यक था. इंटेंस एंगेजमेंट के दौरान अगर कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन हो जाए तो सिचुएशन और डिफिकल्ट हो सकती है, इसलिए मैंने कोशिश की कि ऑर्डर्स एक्यूरेटली और टाइमली तरीके से आगे पहुंचे और ट्रूप्स के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहे. इसी तरह फायर डिसिप्लिन भी बहुत महत्वपूर्ण था
0: जी.
1: हमारा उद्देश्य कंट्रोल्ड और इफेक्टिव रिस्पॉन्स देना था, ना कि केवल अधिक एम्युनेशन खर्च करना.
0: राइट, बेसिकली यू नो, आप लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो पब्लिक तो होती नहीं, इसलिए ये प्रोग्राम जो है संदेश टू सोल्जर्स, जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं उसके माध्यम से हम सिविलियंस को कुछ थोड़ा बहुत पता लग जाता है कि किस तरह का डिसिप्लिन. हम लोग डिसिप्लिन एक वर्ड यूज करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा फैलाव है, और डिसिप्लिन हमेशा रहने में मेरे ख्याल से इट डजंट मीन कि आप हमेशा सीरियस हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, जैसे हम आकाशवाणी रेनबो में करते हैं, थोड़े से गीत संगीत भी सुनते हैं. तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी पसंद का एक गीत हमें चुनकर बताएं कि कौन सा गीत हम इस समय थोड़ा सा माहौल को थोड़ा सा और सॉफ्ट करने के लिए प्ले कर सकते हैं, और कौन सा गीत हो सकता है वो?
1: जी, मैं चाहूंगा कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए.
0: दिस इज अ ग्रेट सॉन्ग, यू नो.

0: पुरानी फिल्म का है
1: जी जी बिल्कुल,
0: मतलब मैं पैदा नहीं हुआ था जब ये फिल्म रिलीज हो गई थी
1: जी
0: और आपकी फिगर और आपकी स्मार्टनेस देखकर मेरे ख्याल से हमारे पैदा होने से पहले ये फिल्म बनी थी। इट्स अ ग्रेट सॉन्ग, किशोर कुमार लता मंगेशकर जी की आवाज में। इस गीत को सुनते हैं, उसके बाद मैं आपके से जानना चाहूंगा, आपके पास आऊंगा दोबारा, कि ये गीत आपको क्यों पसंद है, पन्ना की तमन्ना। लेट्स हेयर इट आउट ऑन संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में। तो कुछ बताना चाहेंगे? पन्ना की तमन्ना बड़ा सॉलिड सॉन्ग है, एक बॉलीवुड से कुछ खास प्यार?
1: जी, मुझे किशोर कुमार जी के गाने सुनने अच्छे लगते हैं, और जब मैं स्टडी करता था कॉलेज टाइम पे, तो उस वक्त जो है मैं जब भी टाइम मिलता था तो फोकस तोड़ने के लिए मैं किशोर जी के गाने और अपने
0: मतलब एक अलग ही जादू है इनकी आवाज में। खिलाड़ियों से हम बात करते हैं वो किशोरदा के फैन है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो किशोरदा के फैन है, लता मंगेशकर जी के फैन है, भले ही ये लोग फिजिकली हमारे साथ नहीं हो लेकिन इनकी आवाज सदियों तक रहेगी। और आई एम श्योर किशोरदा लता जी की सोल, उनकी आत्मा जहां भी होगी बहुत गर्व महसूस करती होगी कि द मैन एंड वुमेन इन यूनिफॉर्म आज भी उनकी आवाज उनको इतना प्रेरित करती है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपके सैन्य जीवन के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, अभी नक्सल अफेक्टेड जो एरियाज हैं उनके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि जब हम उन अफेक्टेड एरियाज में जो ड्यूटी करते हैं तो उस समय जो जो पर्सनल होते हैं वो किस प्रकार विजिलेंट रहते हैं?
1: जी बिल्कुल। नक्सल अफेक्टेड एरियाज में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कभी भी कंप्लेसेंट ना हो। ऐसे एरियाज में ग्राउंड सिचुएशन लगातार बदल सकती है, इसीलिए इंटेलिजेंस इनपुट्स, ब्रीफिंग्स, लोकल सिचुएशन, रूट असेसमेंट और टीम कोऑर्डिनेशन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारी ट्रेनिंग हमें यह सिखाती है कि रूटीन मूवमेंट को भी पूरी

0: प्रोफेशनल अलर्टनेस के साथ किया जाए, लेकिन विजिलेंट केवल हथियार लेकर चौकन्ना रहने का नाम नहीं है। विजिलेंट का अर्थ है अपने सराउंडिंग्स को समझना, असामान्य गतिविधियों को पहचानना, कम्युनिकेशन बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत एप्रोप्रिएट डिसीजन लेना।
1: आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि हमारे साथ सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर मौजूद हैं, और एसएसबी की जहां तक हम बात करें तो ओरिजिनली इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1963 को, तब स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से इसे जाना जाता था, नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और सेवा सुरक्षा और बंधुत्व ये इसका मोटो है, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। और हमारे बॉर्डर्स को गार्ड करते हैं और देश के अंदर जब भी कोई चुनौतीपूर्ण एक मौका आता है या वो क्षण आता है उसमें बिल्कुल सामने डटकर खड़े हो जाते हैं, उसका सामना करते हैं और विजयी होते हैं। चलिए हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़े से पन्ने जो हैं उनको घुमाते हैं, और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे यहां जब हम ये पन्ने थोड़ा सा पीछे मोड़ रहे हैं कि आपके प्रारंभिक जीवन के जो पल थे, जहां बचपन है, शिक्षा है, परिवार है, आपकी अपनी पर्सनालिटी, उसके बारे में कुछ बताइए।
0: जी, मैं जमशेदपुर झारखंड का निवासी हूं। मैंने अपने प्रारंभिक जीवन की बात करूं तो मेरा बचपन एक सामान्य मध्यम वर्गीय पारिवारिक परिवेश में बीता है। मेरे परिवार ने बचपन से ही मुझे अनुशासन, ईमानदारी, मेहनत और बड़ों का सम्मान करने जैसे संस्कार दिए। मैंने रांची यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथमेटिक्स में स्नातक की शिक्षा पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ मुझे शारीरिक गतिविधियों, खेल और अनुशासित जीवन में रुचि थी। मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में मेरे माता पिता और परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। मैं मानता हूं कि व्यक्ति की सफलता केवल उसकी अपनी मेहनत का परिणाम नहीं होती, उसके पीछे परिवार के संस्कार, शिक्षकों का मार्गदर्शन और जीवन में मिले अनुभवों का बहुत बड़ा योगदान होता है।
1: एसएसबी में जब आपके भर्ती होने की जब बारी आई तो आपको ये एसएसबी में ही, सशस्त्र सीमा बल में ही आने के लिए प्रेरणा आपको कहां से मिली? और साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगा कि आपने जब एसएसबी ज्वाइन किया तो उसकी भर्ती की जो प्रक्रिया थी वो कैसी रही?
0: जी बिल्कुल, मेरे लिए प्रेरणा का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मेरे पिता रहे हैं। वे इंडियन रेलवेज में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, साथ ही टेरिटोरियल आर्मी में थे। बचपन में जब मैं उन्हें वर्दी में देखता था तो उन्हें वर्दी में देखकर मेरे अंदर भी देश के लिए कुछ करने का जोश और जुनून पैदा होता था। शायद वहीं से मेरे मन में यह भावना विकसित हुई कि भविष्य में मुझे भी ऐसी वर्दी पहनकर राष्ट्र की सेवा करनी है। इसी भावना को व्यक्त करने वाला अंग्रेजी का एक कोट जो मुझे प्रेरित करता है वो मैं कहना चाहूंगा। द यूनिफॉर्म इज नॉट मेयरली वॉट यू वेयर, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी यू कैरी, द वैल्यूज यू अपहोल्ड एंड द नेशन यू सर्व। मेरे लिए वर्दी केवल पहनावा नहीं है, यह उस जिम्मेदारी, अनुशासन और समर्पण की पहचान है जिसे पहनने वाला व्यक्ति अपने कंधों पर लेकर चलता है।
1: तो दोस्तों, आप सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर की आवाज सुन रहे हैं। हमने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे उनकी ही जुबानी कि एसएसबी ज्वाइन करने से पहले और उसके बाद उनके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं।
0: जी, परिवार के लिए यह गर्व का विषय था, लेकिन स्वाभाविक रूप से थोड़ी चिंता भी थी। यूनिफॉर्म सर्विस में पोस्टिंग्स

0: अलग राज्यों और कई बार कठिन तथा संवेदनशील क्षेत्रों में होती है, इसलिए परिवार को पता था कि आगे का जीवन आसान नहीं होगा। लेकिन मेरे परिवार ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया और उसके बाद अलग अलग लोकेशंस पर मेरी पोस्टिंग हुई, तो धीरे धीरे उन्हें भी इस प्रोफेशन की चुनौतियों की समझ हुई। और जब मुझे पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया, तो वह मेरे परिवार के लिए अत्यंत भावुक और गर्व का क्षण था।
1: आपने अपने गैलेंट्री अवार्ड की बात की, तो मेरे ख्याल से ये जो ऑपरेशंस आपने किए जिसके लिए ये सम्मान आपको दिया गया, गैलेंट्री अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है ना, तो इसकी जो उपलब्धि थी, इसके महत्व के बारे में तो हम लोग जानेंगे, लेकिन आपके लिए वो क्षण कैसा था जब आपको पता लगा कि आपको इस गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, और खास तौर से जब एक ऐसी फोर्स के बारे में हम बात करते हैं जिसे 2001 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ट्रांसफर कर दिया गया था, और जो नेपाल और भूटान के बॉर्डर्स पे जो मैनिंग की जो ड्यूटीज थी, उसके बाद एक और दायित्व दिया गया इन्हें, क्योंकि जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास कारगिल युद्ध के बाद, तो एक अडॉप्शन जो कहते हैं कि वन बॉर्डर वन फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया। और बॉर्डर एरिया हो, या मैंने जैसे आपने आप भी बता रहे हैं और मैं भी बता रहा हूं अपने श्रोताओं को कि देश के अंदर जो गतिविधियां चलती हैं, जहां पर भी कोई चैलेंजिंग मोमेंट आता है, उसको उसका सामना करने के लिए, उसके सामने खड़े होने के लिए सशस्त्र सीमा बल हमेशा तैयार रहती है, और वहीं से गैलेंट्री अवार्ड के लिए ये सम्मान अनाउंस होना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। जब ये अनाउंस हुआ और आपको पहली बार पता लगा, तो आपके वो क्षण कैसे थे?
0: जी, यह मेरे लिए बहुत गर्व और भावनात्मक क्षण था। सबसे पहले मेरे मन में अपने सीनियर्स, अपने साथी कार्मिक और अपने परिवार के प्रति आभार आया, क्योंकि जिस ऑपरेशन के लिए मुझे यह सम्मान मिला उसमें मैं अकेला नहीं था। पूरी टीम ने कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारी निभाई, इसलिए मैं इस मेडल को पूरी टीम के साहस, प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन का सम्मान मानता हूं।
1: ये जो गैलेंट्री अवार्ड की हम बात कर रहे हैं, तो असिस्टेंट कमांडर सैयद अफसर से मैं पूछना चाहूंगा कि ये मेडल मिलने के बाद आपकी सोच में भी कोई बदलाव आया?
0: जी, बताना चाहूंगा, सम्मान मिलने के बाद मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। मेडल मेरे लिए यह रिमाइंडर है कि मुझे आगे भी अपने प्रोफेशन में उसी डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म को बनाए रखना है। मैं इसे उपलब्धि का अंत नहीं बल्कि आगे बेहतर करने की प्रेरणा मानता हूं।
1: और मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा अर्थ है गैलेंट्री मेडल का।
0: जी बिल्कुल।
1: राइट देन, जब गैलेंट्री अवार्ड मेडल मिलता है, सैयद अफसर मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो मेडल की जब खबर आती है तो उस दिन रात को नींद कैसे आती है, और अगली सुबह वो भाव कैसे होते हैं? गौरव का क्षण होता है?
0: बिल्कुल, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए जो ऑपरेशन में उस दिन डटकर खड़े थे साथ, और उन सभी मेहनत और ट्रेनिंग के दिनों के लिए जो हमने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए किया था।
1: उस दिन जब ये खबर आपके पास आई, तो शायद कोई ऐसा मोमेंट भी होगा जहां आप अकेले होंगे, कोई नहीं होगा आसपास, कुछ देर के लिए, उस समय नहीं तो उसके थोड़ी देर बाद, आप और सिर्फ आप, जहां आप अपनी आत्मा से बात कर रहे होंगे, कुछ ऐसा मोमेंट था, कुछ शेयर करना चाहेंगे?
0: जो बिल्कुल, जब हम ऑपरेशंस करते हैं तो उस वक्त हमारे दिमाग में मेडल्स ये सब नहीं होता, बट जब आपके किसी अच्छे काम को रिकग्निशन मिलता है तो बिल्कुल बहुत खुशी होती है, और वो भावुक क्षण था मेरे लिए।
1: एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जिसके बारे में मैंने आपसे नहीं बताया, और मैं नहीं बताता किसी को कि ये सवाल मैं शो में पूछूंगा आपसे, और ये सवाल

0: ने भारत के टॉप स्पोर्ट्स पर्सन से पूछा है, देश के जांबाज सिपाहियों से पूछा है, अफसरों से पूछा है, सोल्जर से पूछा है। इसलिए ये सवाल मैं अब आपके आंखों में देखकर ये पूछना चाहता हूं। सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर, ये तिरंगा आपके लिए क्या मायने रखता है, जिसकी आन बान शान के नीचे आप अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं?
1: जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया, तिरंगा हमारी आन बान और शान है और इसी के लिए हम अपनी जान निछोर कर सकते हैं। इसी के हमेशा ऊंचा रहने के लिए हम अपनी सब कुछ निछोर कर देते हैं और
0: भावुक क्षण है। सवाल उतना आसान नहीं है, है ना? ये तिरंगा कभी कभी वो भाव निकाल ही लाता है हमारे अंदर से, है ना? अच्छा मुझे ये बताइए, आप देश की सेवा कर रहे हैं और आपका परिवार भी है और उसके बीच में एक कहते हैं ना, एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है कि फैमिली की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फैमिली कहती है कि भाई हमारी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोन आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे। थोड़ा सा जो आपकी डिसिप्लिन लाइफ है उससे सिविलियन लाइफ थोड़ी सी अलग होती है, तो आप देश सेवा और परिवार के बीच में जो संतुलन है वो कैसे बनाए रखते हैं?
1: जी ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। यह निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। हमारी पोस्टिंग्स और ड्यूटीज के कारण कई बार परिवार से दूर रहना पड़ता है और जो इम्पोर्टेंट ओकेजन्स होते हैं जो हमारे परिवार के, वो भी कई कबार मिस हो जाते हैं। ऐसे में परिवार का अंडरस्टैंडिंग रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब भी समय मिलता है मैं परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताता हूँ और कम्युनिकेशन बनाए रखता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि जब एक सोल्जर देश की सेवा करता है तो उसके साथ उसका परिवार भी सैक्रिफाइस करता है।
0: देखो परिवार का योगदान तो बहुत रहता है, एंड ऑफकोर्स जब हम बात करते हैं परिवार के संतुलन के बारे में, उनका सपोर्ट, उसके बगैर तो कोई बैलेंस बन ही नहीं सकता लाइफ में। और हम आकाशवाणी में एक बैलेंस बना के रखते हैं अपने लिसनर्स के साथ, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी श्रोता इस समय संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं, न्यूज ऑन AIR के माध्यम से देश और विदेश में भी हमें सुना जा रहा है, हम इस बात से परिचित हैं, तो अगर आप कोई व्हाट्सएप मैसेज करना चाहें तो एक नंबर मैं आपको बता रहा हूं जहां पर आप व्हाट्सएप से अपने भाव, अपने प्रतिक्रिया, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सईद अफसर जी से तो वो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 9868107070, 9868107070। हाँ, लग ही नहीं रहा कि किसी अजनबी से मुलाकात हो रही है और समय हो गया है कि एक और गीत सुने, तो कौन सा गीत आप प्ले करना चाहेंगे? किशोरदा के तो आप फैन हैं
1: जी। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई।
0: अरे इसके अंदर तो बहुत राज छुपे हैं असिस्टेंट कमांडेंट साहब, जरूर इसके पीछे बहुत बड़ा कोई रीजन है। तो ये गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश किशोरदा की आवाज में फिल्म अजनबी से।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ यहां असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर मौजूद हैं, सशस्त्र सीमा बल जो हमारी फोर्स है, उसको बहुत सारी शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए भी आकाशवाणी की तरफ से। और बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं जिनसे थोड़ा सा परिचित होंगे थोड़ी देर में, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि सशस्त्र सीमा बल में जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो कैसी रहती है और आपके लिए कैसी थी।
1: जी, मैंने एसएसबी वर्ष 2012 में बतौर उपनिरीक्षक के पद पर ज्वाइन किया एवं अपनी सेवा यात्रा शुरू की। भर्ती की प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा, मेडिकल परीक्षण, इंटरव्यू तथा अन्य निर्धारित चयन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। सेलेक्शन और ज्वाइनिंग के दौरान मेरे लिए यह एक नया अनुभव था। एक यूनिफॉर्म फोर्स में आने के लिए फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल प्रिपेयर्डनेस, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की भी आवश्यकता होती है। ज्वाइनिंग के बाद मेरा पहला महत्वपूर्ण चरण सलोनीबाड़ी असम में सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक ट्रेनिंग का रहा। ट्रेनिंग के दौरान मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अब जीवन की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। अब केवल व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन और देश के प्रति जिम्मेदारी भी थी। वर्ष 2023 में मैंने विभागीय लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दैट इज LDCE उत्तीर्ण कर असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी के पद पर पदोन्नति प्राप्त की। वर्तमान में मैं सशस्त्र सीमा बल 24वीं वाहिनी रंगिया असम में बतौर सहायक कमांडेंट अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं।
0: तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट तक का जो आपका सफर है वो कैसा रहा। और इससे पहले कि आप उत्तर दें, मैं कुछ मैसेजेस भी पढ़ लेता हूं जो हमारे पास आ रहे हैं देश भर से। और सबसे पहले ये मैसेज जिनका आया है वो है यश शिंदे, मुंबई से लिख रहे हैं और प्रोग्राम के बारे

0: में उनकी प्रतिक्रिया ये ही कि उन्हें ये प्रोग्राम आपकी आवाज और आपके विचार सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। शांताचारा बदिगर कोक्कानूर देवनागरी से संदेश टू सोल्जर्स की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि वो याद दिलाते हैं ये प्रोग्राम की सर्विस सैक्रिफाइस ड्यूटी हमारे ब्रेव सोल्जर्स की, जो हमारे इस भारतवर्ष को गार्ड कर रहे हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है। और प्रभावित होते होते बी के दत्त हमें नई दिल्ली से मैसेज लिख रहे हैं, अनमोल राय छपरा बिहार से हमें मैसेज लिख बैठे हैं, और आकाशवाणी का धन्यवाद दे रहे हैं चेतन पटेरिया ग्वालियर से। राजकुमार संतानी एक मैसेज लिख रहे हैं, मोहन चंद्र जोशी ने अपना एक मैसेज हमारे तक पहुंचाया है, और एक और मैसेज हमारे पास आया है जो मैं पढ़ना चाहूंगा यहाँ पे। सैयद सर के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अस्सलाम वालेकुम सर, हमें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, और स्वर रोड मुरसेना डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी से मैसेज आया है, और गुलाफशाह इदरीसी जीनत और नाजिया शाजिया के साथ ये मैसेज हम तक पहुंचा है। कोकानूर से भी एक मैसेज आया है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम में वार्ता सुनकर हमें लग रहा है कि एसएसबी कितना महत्वपूर्ण और बड़ा काम कर रही है। अमेरिका से एक मैसेज आ गया हमारे पास, एंड ऑफ कोर्स वो कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, नाम लिखा नहीं है तो हम नाम ले नहीं पाएंगे। सूरज कुमार शेखुपुरा बिहार से हमें मैसेज लिख रहे हैं, एसएसबी को सैल्यूट दे रहे हैं, एसएसबी कमांडेंट साहब को संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम का नियमित श्रोता, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से विजय कुमार विश्वनाथन का प्रणाम, बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं आपकी गैलेंट्री अवार्ड के लिए। सैनिकों का जज्बा जो है उनकी शौर्य गाथा पर यह केंद्रित प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। संतोष श्रीवास्तव को पसंद आ रहा है जो प्रयागराज ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में प्रोग्राम्स करते हैं। सुरेश कुमार 68 बटालियन एसएसबी मणिपुर एल एंड ओ ड्यूटी कर रहे हैं सर, और एल एंड ओ ड्यूटी के लिए कुछ टिप्स बताइए, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं क्या? एएसआई सुरेश कुमार आपसे परिचित हैं, एसएसबी के ही हैं,
1: जी बिल्कुल।
0: तो वो कह रहे हैं कुछ टिप्स बताइए एल एंड ओ।
1: LNO बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी होता है। अभी आप जानते हैं मणिपुर की सिचुएशन थोड़ी सी मतलब गड़बड़ाई हुई है, और वहां पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस जो रेगुलर फोर्सेस वहां तैनात है उसके अलावा अभी वहां पे तैनात की गई है ताकि सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा सके। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आपको जो ड्यूटी आपकी कंपनी कमांडर के द्वारा या जो एडहॉक कमांडेंट आपके हैं वहां पे उसके द्वारा लगाई गई है, या अभी हमारे 68 बटालियन वहां पे बेसिकली उनका केएलपी वहां पे रिलोकेट हो गया है, तो अभी 68 बटालियन की लगभग सभी वाहिनियां मणिपुर में हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो आपको ड्यूटी दिया जाए दी जाती है उस ड्यूटी को आप बहुत ही सतर्कता के साथ में और विजिलेंट होकर के करें, और किसी भी अनटूवर्ड स्थिति के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, और साथ ही साथ स्थिति को समझें और सिचुएशन की डिमांड को देखते हुए एक्शन लें। और जो आपके सीनियर हैं, जो आपके जस्ट सीनियर हैं, जो आपके सुपीरियर हैं, उनके जो ऑर्डर्स प्रॉपर फॉलो करें, और जो ट्रेनिंग में आपने सीखा है उस ट्रेनिंग को वहां पे जो है पूरी तरीके से उतारें, और आपकी अपने आप ही जो ड्यूटी है वो परफेक्ट हो जाएगी।
0: वाह, बहुत अच्छे विचार आपने शेयर किए यहाँ पे, और बहुत सारे लोग हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। मानसी महास्कर अंधेरी मुंबई से उनमें से एक हैं, और आपको दिल से वो बधाइयां दे रही हैं, कह रही हैं कि आज के मेहमान अफसर सर और सब दलों के फौजी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, और मैं हमेशा सुनती हूँ प्रोग्राम, एंड ऑफ कोर्स वो अपने भाव भले ही व्हाट्सएप के जरिए चार लाइनों में ही व्यक्त कर रही हूं, लेकिन इन चार लाइनों के पीछे ढेर सारा प्रेम हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, एंड ऑफ कोर्स फॉर द ग्रेट नेशन दैट वी लिव इन।

0: तो हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, एंड ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें. तो सबसे पहले उसी सवाल को मैं दोहरा रहा हूँ असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर की, सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट तक का जो आपका सफर था वो कैसा था?
1: जी, यह सफर मेरे लिए निरंतर लर्निंग्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सफर रहा है. मैंने एसएसबी में अपने कैरियर की शुरुआत सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री के रूप में की और आज असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में जिम्मेदारी निभा रहा हूँ. समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्वरूप बदलता गया. एक जूनियर रैंक्स में आपका फोकस मुख्य रूप से अपनी असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रोफेशनली पूरा करने पर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको अपने साथ काम करने वाले कार्मिकों की सेफ्टी, उनका मोराल, डिसिप्लिन और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है. इस सफर ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाई. लीडरशिप का अर्थ केवल आगे रहना नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर अपनी टीम के लिए आगे खड़ा होना भी लीडरशिप है.
0: सशस्त्र सीमा बल, जितनी भी तारीफ हम करें शायद शब्द कम पड़ जाएं. जानते हैं कि साल 2013 में सशस्त्र सीमा बल पर एक पोस्टल स्टैंप इशू किया गया था और वहां पे भारत की वो सरहद जहां पर बर्फीली चट्टानों के बीच में हमारे जाबाज सैनिक सुरक्षा का वो दायित्व संभालते हैं, एक कवच पहनते हैं, भारत मां का दिया हुआ वो कवच उस यूनिफॉर्म के रूप में. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, हर प्रांत, हर जगह में सशस्त्र सीमा बल लगभग हर जगह अपनी सेवाएं हमें देती हैं. और इस सशस्त्र सीमा बल में लीडर्स भी बहुत अच्छे हैं. तो यहां हमारे साथ स्टूडियो में जो बैठे हैं असिस्टेंट कमांडर सईद अफसर, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके अनुसार एक अच्छा लीडर कौन होता है.
1: जी बिल्कुल, लीडर्स की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है. जो मेरे लिए है मैं बताना चाहूंगा. मेरे विचार से अच्छा लीडर वह होता है जो अपनी टीम को केवल आदेश ना दे बल्कि उन्हें समझे. एक लीडर को अपने कार्मिकों की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस दोनों को समझना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, लीडर को अपने एक्शन से एग्जाम्पल सेट करना चाहिए. अगर आप अपनी टीम से कमिटमेंट की अपेक्षा करते हैं तो आपको भी उतना ही कमिटेड होना चाहिए.
0: वाह, और बहुत कम समय बचा है, लगभग हमारे पास 5 मिनट बचे हैं. तो अपने श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर है जो मैं आपको दोबारा शेयर कर रहा हूं, आप अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं. नंबर है 9868107070 9868107070. असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर हमारे साथ मौजूद हैं. यहां पर कुछ और मैं आपसे बात करना चाहूंगा. थोड़ा सा चीजों को हमने बहुत सीरियसली लिया, लेकिन हमारे देश के युवा भी हैं जो शायद कोई मार्गदर्शन चाह रहे हो. अगर उन युवाओं के लिए मैं आपसे कहूं कि आप अपनी जुबानी, सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर की जुबानी, अगर कोई मैसेज उन यंग लोगों तक पहुंचाया जाए तो वो क्या होगा?
1: जी बिल्कुल, मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि अपने कैरियर

0: का चुनाव केवल सैलरी या स्टेटस के आधार पर ना करें। ऐसा प्रोफेशन चुनें जिसमें आपकी रुचि हो और जिसमें आप समाज और देश के लिए मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकें। अगर कोई युवा यूनिफॉर्म सर्विस में आना चाहता है तो उसे फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और प्रिजर्वेंस पर भी काम करना चाहिए। फेलियर्स आए तो उनसे सीखें, लेकिन अपने लक्ष्य को ना छोड़ें।
1: आज से अगर 14 साल पहले थोड़ा पीछे जाएं, साल 2012 में, तो 2012 के सईद अफसर और आज के अफसर जो हमारे सईद अफसर साहब हैं, उनसे अगर वो दोनों पर्सनालिटी मिलें तो 2026 के सईद अफसर 2012 के सईद अफसर से क्या कहेंगे? कुछ ऐसे ही भाव जो आपने युवाओं के लिए कहे?
0: जी बिल्कुल, मैं 2012 के सईद अफसर से कहना चाहूंगा कि अपनी मेहनत और अपने उद्देश्य पर विश्वास बनाए रखो। आगे रास्ते में कई चैलेंजेस आएंगे, कई बार परिवार से दूर रहना पड़ेगा और कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स और अपनी ड्यूटी से कंप्रोमाइज मत करना। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सफलता का श्रेय अकेले खुद को मत देना। जिन लोगों ने आपके सफर में आपका साथ दिया है उन्हें हमेशा याद रखना।
1: और आकाशवाणी ने भी तो आपका बहुत साथ दिया है। मेरे ख्याल से आपकी फोर्स में बहुत सारे लोग जो बहुत डिफिकल्ट टेरेन में होंगे, क्या मतलब पहले तो बहुत सारे लोग खुले तरीके से आकाशवाणी को चला के रेडियो सुनते थे, आपका आकाशवाणी के साथ वो रिलेशन और जो आपके बटालियन हो या आपके ग्रुप के जो लोग हैं आकाशवाणी के प्रति, उनका भी एक भाव होगा, जुड़ाव होगा, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा। देश की सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात फोर्सेस की जिम्मेदारी नहीं है, राष्ट्र निर्माण में हर नागरिक की अपनी भूमिका है। मैं विशेष रूप से युवाओं से कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और हार्ड वर्क को महत्व दें। जो युवा यूनिफॉर्म फोर्सेस में आने का सपना देखते हैं, वे पूरे समर्पण के साथ तैयारी करें और कठिनाइयों से कभी ना घबराएं। मेरे लिए राष्ट्र सेवा केवल एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि एक कमिटमेंट है, और पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मेरे लिए उस कमिटमेंट को और मजबूत करने की प्रेरणा है।
1: संदेश टू सोल्जर्स में समय निकलता जा रहा है बहुत ही जल्द, हमें इस प्रोग्राम का आज समापन करना पड़ेगा, लेकिन चलते चलते वो लोग जो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं व्हाट्सएप जिनसे मैंने मंगाया है, उनके नाम में अपने ही अंदाज में लेना चाहूंगा। मंसूर अली बीकानेर से हमारे को मैसेज भेज रहे हैं, साथ ही साथ SHQ बोंगाईगांव CTGD पार्था बर्मन, शायद ये भी SSB से ही हैं, इन्होंने हमें मैसेज भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया ये मैसेज भेजने के लिए। जय हिंद सर, नाम अपना नहीं लिखा। हाँ, सौरभ कुमार हमें मैसेज भेज बैठे हैं, 16वीं बाहिनी SSB से स्वागत, बंदन अभिनंदन संचार शाखा से, ये आपके लिए मैसेज आया है। एंड ऑफकोर्स सौरभ हिमाचल प्रदेश से हमें मैसेज भेज चुके हैं, जय हिंद कहते हुए वो कह रहे हैं कि एक नए योद्धा है 73rd वाहिनी सशस्त्र सीमा बल सेंथुक में, नहीं टाटा योद्धा के आगमन के अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना का आयोजन किया है, सर को बता दीजिए। जय हिंद सर। बहुत कम समय बच गया है, हमें ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो पे आए, अपने भाव शेयर किए, और वो गैलेंट्री अवार्ड मेडल मैं देख पा रहा हूं और मेरे अंदर बहुत ही इमोशन आ रहा है जो मैं व्यक्त नहीं कर सकता, और उन मेडल्स को देख के मैं यही कह सकता हूं दैट आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन।
0: थैंक यू सो मच।
1: और यहीं पे हम संदेश टू सोल्जर्स से आप सभी लोगों से विदा लेते हैं, आशा करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ, नमस्कार।

0: Durante por que habrán la gente en el medio de una familia de Akashwani Kargilin, vas por tu sodo a ganar su chusón su caseta. Doctor Anand Kumar, Mishre Kanar de Luxe Escola Tisek Project, Nyan Mazat, Tiso Lenkan Pen, Subash Kanam.
1: साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। साथियों, स्त्री जब माँ बनती है तो वो उसके लिए एक बहुत सुखद और बहुत बड़ी अनुभूति होती है। हर स्त्री का सपना होता है माँ बनना। तो गर्भावस्था के दौरान भी क्या क्या सावधानियां बरतें, खान पान में क्या खाएं, खान पान में कौन सी सावधानियां बरतें, और जब ये जो समय है इस समय में हम क्या कार्य करें क्या ना करें, इसके संदर्भ में कई बार लोग नहीं जानते होते और कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं या अज्ञानतावश कुछ ऐसे क्रियाकलाप हो जाते हैं जिसके दुखद परिणाम हो जाते हैं। तो इस दौरान हम खान पान कैसे रखें, सावधानियां कौन सी रखें, और सुरक्षित जो प्रसव है वहां तक पहुंचने का जो सफर है वो कैसे तय करें, आइए इसके संदर्भ में बात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर इंदुलता से, जो SGPGI लखनऊ में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, जैसे किसी भी स्त्री के मां बनने का जो सफर है वो कौन सा ऐसा परीक्षण है जिसके आधार पर वो ये जान जाती है या वो समझ जाती है कि वो माँ बनने वाली है?
2: हाँ, इसमें सबसे पहले जो भी स्त्री है उसको अपना जो लास्ट महावारी का तारीख है उसके बारे में ध्यान रखना होता है। अगर उस तारीख से ऊपर दिन चढ़ते हैं तो उस स्थिति में उनको एक पेशाब का एक टेस्ट होता है जिसमें एक हार्मोन की मात्रा की जांच की जाती है जिससे पता चलता है कि वो स्त्री गर्भवती है कि नहीं। तो वो पेशाब के टेस्ट द्वारा, जिसकी किट जो है बाजार में बहुत ही आम तौर पे उपलब्ध है, वो कहीं से भी ये खरीद सकते हैं और टेस्ट करके देख सकते हैं जिससे पता चल सकता है कि वो गर्भवती है कि नहीं है।
1: जी जी, यदि किसी स्त्री को ये पता चल जा रहा है कि वो गर्भवती है तो उसके बाद वो अपने खान पान में या अपनी दैनिक दिनचर्या में क्या बदलाव करें और कौन से पदार्थ को महत्ता दें जिससे कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे?
2: जब किसी भी स्त्री को यह पता चलता है कि वो गर्भवती है तो सबसे पहले तो वो एक विटामिन की गोली होती है जिसको हम फोलिक एसिड कहते हैं, उसको तुरंत लेना शुरू कर दें, क्योंकि शुरू के 3 महीने इस फोलिक एसिड को लेने से बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि इससे भ्रूण में होने वाले बहुत सारे जो जन्मजात कुछ विकृति होती हैं उनसे हम बच सकते हैं। साथ में हम इन चीजों का भी ध्यान रखें जिससे गर्भपात होने की आशंका कम हो जाए, जैसे कि बहुत ज्यादा भारी वजन ना उठाएं, सीढ़ियां बहुत ज्यादा चढ़े उतरे नहीं, इस तरीके से इन चीजों का ध्यान रखना है और बहुत ही संतुलित आहार लेना शुरू कर देना है गर्भावस्था में शुरू से ही।
1: जी जी,
2: तो यह आगे बहुत चल के फायदा करता है।
1: जी जी, डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने संतुलित आहार की बात की तो वो कौन कौन से पदार्थ हैं जो संतुलित आहार की श्रेणी में आते हैं या किसी गर्भवती स्त्री को ये इस प्रकार का भोजन करना चाहिए?
2: देखिये, संतुलित आहार का मतलब है कि आपके जो खाने में सभी पदार्थ जो कि एक खाने में होने चाहिए उनका एक संतुलित मात्रा हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या प्रोटीन्स हैं और विटामिन मिनरल्स है, तो इन सभी की एक संतुलित मात्रा होनी चाहिए। जैसे कि गर्भावस्था में जो खाना खाया जाता है उसमें जैसे 50-60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 20-30% जो है वो प्रोटीन्स होना चाहिए, 10-20% जो है करीब वसा होनी चाहिए। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए, जैसे आमतौर पर अगर हम कहें तो खाने में जैसे दाल है, रोटी है, सब्जी है और चावल है, दही, दूध, ये सब एक अगर हम अपने रोजमर्रा के खाने में रखेंगे तो ये लगभग आपके खाने को एक संतुलित रूप से एक वो देगा।
1: जैसे इस सफर के दौरान क्या कुछ टेस्ट भी कराने होते हैं और कुछ टीकाकरण भी कराना होता है?
2: हाँ, इसमें यह है कि जब भी किसी स्त्री को पता चलता है कि प्रेगनेंसी है तो उसको कुछ जो एक जांचें हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो कराई जाती हैं वो कराएं, जिसमें शरीर में कितनी खून की मात्रा है उसके लिए हीमोग्लोबिन का टेस्ट किया जाता है, या प्लेटलेट की कितनी मात्रा है, पेशाब में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पेशाब में प्रोटीन या कोई शुगर की मात्रा, शर्करा की मात्रा तो नहीं जा रही है, या शरीर में कोई भी गर्भावस्था के दौरान कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो ये जानने के लिए जैसे हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन होता है या सिफिलिस का इन्फेक्शन होता है, HIV का इन्फेक्शन होता है, ये सब देखने के लिए, या ब्लड शुगर का टेस्ट कराते हैं जिसमें खाली पेट और खाने के 2 घंटे बाद चेक कराया जाता है कि ब्लड में शुगर की मात्रा कितनी है, और इसके अलावा जैसे थायराइड की जांच कराई जाती है। तो ये सब जांचें, खून और पेशाब की जांचें, कभी भी जब भी प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन होता है तो ये सब जांचें जरूर करानी चाहिए।
1: जी जी, डॉक्टर साहब, बहुत बार लोगों में ये भ्रांतियां होती हैं।

0: कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत काम करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि भाई बहुत आराम करिए, तो एक जो सामान्य दिनचर्या है वो किसी स्त्री की क्या होनी चाहिए इस दौरान?
1: एक समान दिनचर्या में ये किसी भी स्त्री को ये मना नहीं होता कि उसको काम नहीं करना है, लेकिन अगर शुरू के 3 महीनों में गर्भपात की आशंका है, जो कि जब किसी भी लेडी डॉक्टर को दिखाते हैं और वो ये बोलती है कि भाई आपको गर्भपात की आशंका है, तो डेली कुछ जो रोजमर्रा की जो दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे बहुत ज्यादा भारी वजन ना उठाएं, मेहनत वाला काम ना करें और थोड़ा आराम ज्यादा करें। जब शुरू के 3 महीने निकल जाते हैं तो ये आशंका कम हो जाती है, तो आप फिर दोबारा अपनी जो रूटीन एक्टिविटी है, जो रूटीन दिनचर्या है आपकी, वो आप कर सकते हैं।
0: जी जी, तो श्रोताओं ये थी हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर इंदुलता, और डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई प्रसव के दौरान क्या क्या करना चाहिए, गर्भावस्था के दौरान क्या क्या करना चाहिए, खान पान हमारा कैसा हो, और हम सुरक्षा के और सावधानियों के क्या प्रयोग क्या उपयोग करें और क्या क्या सावधानियां बरतें जिससे वो स्त्री भी सुरक्षित रहे और होने वाला बच्चा भी सुरक्षित रहे। डॉक्टर साहब आपने हमें इसके विषय में इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: Дорогие интервьюисты, скольки соединений нет, пин мире мой виду на памяти дюа кашване и каргилен. У вас буду судоганы мерцмчу сухасунсу касата спонсор программ кисанвани прочугет нен масад.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रहे हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम मोर क्राउडेड, टेक्नोलॉजीज मोर पावरफुल एंड एक्टर्स मोर न्यूमरस।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: इंडियाज अप्रोच इज रूटेड इन वसुधैव कुटुम्बकम, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। दिस स्पिरिट मस्ट नाउ ट्रेवल बियॉन्ड अर्थ। वी सपोर्ट अ सेफ, सिक्योर, पीसफुल एंड सस्टेनेबल स्पेस डोमेन एंकर्ड इन इंटरनेशनल लॉ, डायलॉग एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। साइंटिफिक डेटा मस्ट सर्व द कॉमन गुड विद ओपननेस एंड इंटीग्रिटी। इंडिया स्पेस जर्नी रिफ्लेक्ट दिस फिलोसॉफी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति शी 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस

0: ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से सोमवार तक राजधानी में ड्रोन और अन्य छोटे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत ये आदेश जारी किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक, उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने दूरदराज और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में भरोसेमंद बिजली विकल्प उपलब्ध कराने में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री नाइक ने आज भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी के पूर्वावलोकन कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में उल्लेखनीय बदलाव आया है। और खेलों में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। और भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में भी अपना स्थान पक्का कर लिया है। अब 12 सितंबर को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the International Space Summit at Paris in France today.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Highlighting the remarkable growth of country's space journey, Mr. Modi said, India aims to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. Prime Minister Modi said, the country's guiding principle is clear, their benefits must reach all humanity. Lauding the role of ISRO in space journey, Mr. Modi said, ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. New Delhi is gearing up to host the 18th BRICS summit this weekend with heightened security, infrastructure upgrades and extensive preparations across the national capital. The two-day summit beginning at Bharat Mandapam on Saturday brings together the world's major emerging economies. India is the current chair of the influential grouping. Top leaders of the grouping, including Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin, will be attending the BRICS summit. Chinese Foreign Ministry today said President Xi will be arriving in India this week to take part in the summit at the invitation of Prime Minister Narendra Modi. The visit comes amid a volatile global situation, ongoing conflict in West Asia and the Russia-Ukraine war. This will be Xi's first visit to India in nearly 7 years. Earlier this week, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal in a media briefing had said Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with numerous leaders on the sidelines of the BRICS summit. Delhi police has made elaborate arrangements in view of the BRICS summit, giving details about the security arrangements. Special Commissioner of Police, Protective Security Division, Manish Kumar Agrawal said that arrangements have been planned to ensure maximum security for visiting dignitaries while causing minimum inconvenience to the public. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi

0: met eminent philanthropist Prince Rahim Aga Khan V in New Delhi today. During the meeting at Rashtrapati Bhavan, President Murmu appreciated the work undertaken by the Aga Khan Development Network. She said it demonstrates how non-profit organizations working in partnership with the government can improve people's quality of life. During Prince Aga Khan V's interaction with the Vice President at Up Rashtrapati Bhavan, the two leaders discussed the Aga Khan Development Network's contributions to water and sanitation, women-led self-help groups, education and community development. Prime Minister Narendra Modi said during their meeting, they discussed ways to further strengthen India's partnership with the Aga Khan Development Network. Secretary of Ministry of Information and Broadcasting Chanchal Kumar today reviewed the functioning of all media units of the ministry operating in Kashmir. The secretary reviewed news and programs of Akashvani and Doordarshan and took stock of the campaigns and outreach activities of Press Information Bureau and Central Bureau of Communication. The secretary expressed satisfaction over the overall functioning of the media units. Benchmark domestic equity indices ended 0.2% higher today, snapping a three-day losing streak. The Sensex gained 138 points to close at 74,903. The Nifty added 46 points to settle at 23,478. In hockey, the Indian women's team stormed into the semi-finals of the Junior Asia Cup with a ruthless 19-0 demolition of Pakistan in quarter-final at Mochi in China today. And in women's cricket, India will take on Bangladesh in the semi-final of Asia Cup in Dubai at 8 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
1: Durantes Akashwani Delhi kana khabarun langan net pin medium wave don FM ka du Akashwani Karkilin.
2: Hey guys,
3: hey, congratulations.
2: Aaj to party chahiye.
4: Hey, champion ke sath selfie lenge.
5: Idea. Yahi karte hain party.
2: Pizza party. Yeah. चल अपना कार्ड और पिन दे
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें
2: बाय गर्ल्स कहाँ जा रही है सुना नहीं नो शेयरिंग
5: आरबीआई कहता है जानकार बने चौकन्ने रहे
6: हो गया इंतजाम
7: किसका
6: गुड्डी की फीस का
7: दिखा 20,000 का लोन तुरंत पता है कौन दे रहा है ब्याज कितना है लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत वो भी जांच कर हो गया इंतजाम पगार एडवांस में भेजिए
8: आरबीआई कहता है
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव
10: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
11: आई तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना
12: दिमाग चार्ज कर अपना
13: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
12: देखा
11: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
13: अब क्या करोगे
11: फ्री वाई फाई है ना
12: बुद्धू सुधर जा
13: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
11: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
13: आरबीआई कहता है
9: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
14: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएलआई इससे बेहतर कुछ नहीं
15: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें
16: मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज लॉन्च कर रहा है 1 अगस्त से क्या आप इसमें भाग लेना चाहते हैं आइए सिर्फ एक मिनट में जानते हैं कैसे सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से वेव्स ओटीटी ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें अब अपने मोबाइल नंबर या उपलब्ध किसी भी साइन इन विकल्प से रजिस्टर करें और लॉग इन करें इसके बाद माई वेव्स सेक्शन में जाएं और अपना क्रिएटर प्रोफाइल तैयार करें अब अवेलेबल प्रोग्राम में से जेम्स ऑफ इंडिया चुनें अपना ओरिजिनल डिजिटल कंटेंट अपलोड करें सभी आवश्यक डिटेल्स भरें और सबमिट पर क्लिक करें एंड योर एंट्री सबमिटेड सक्सेसफुली जेम्स ऑफ इंडिया आपकी जिले की कहानी पूरे भारत की पहचान
1: मीडियम दोनों एफ एम के दिवाकाशवाणी।

0: 어디 존재 프로 있나? 야, 재미있나? 가족신에 오는데 하세요. 자네들이 롤자스포 프로사즈에 갈아줘서 롤인데 자네들 하나 갈아줘서 롤자스포 짱오치나세?
1: 다디나 임포르탄트 팩터 수미 오마 카라자차 에크 팩터 오디나노 에크 팩터인 두스라 팩터 이라 하이진 아제스
0: 자체스포에서
1: अगर आप मीठा खा के जल्दी से क्लीन कर लेंगे तो आपका टूथ डिके नहीं होगा. तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो टाइम है. जितने देर आपका मीठा आपके दांतों पे चिपका रहेगा उससे सड़न होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ते हैं. तो ये तीनों चीजें, एक तो होता है आपका डाइट, ठीक है, मीठा खाना. सेकेंड थिंग, आप ब्रश नहीं करते, वो एक इम्पॉर्टेंट है. और तीसरा टाइम, कितने टाइम तक ये जो है आपके दांत पे अटैच रहेगा. तो ठुगुनला बेसिकली ज्यादा मतेस अगर नीत ना बॉटल खेना आता सताना या सोने से पहले अगर बॉटल फीडिंग ज्यादा करते हैं तो उसमें रैम्पेंट केरीज या नर्सिंग बॉटल केरीज होने का ज्यादा डर रहता है. पेरेंट्स से मेरी ये एडवाइस है कि अगर छोटे बच्चे इन्फेंट्स हैं तो उनको रात को सोने से पहले या सोते टाइम बॉटल फीडिंग ना करें. अर्ली एज में भी आप ओरल हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं. इनफैक्ट जब इन्फेंट सोते हैं उनको थोड़ा सा उंगली से मसाज करके क्लीन कर सकते हैं गम्स. अर्ली चाइल्डहुड में आप यही देख सकते हैं कि आपके बच्चे का कोई दूध का दांत जो है वो खराब तो नहीं है. आजकल आप देखते हैं बच्चों को थोड़ा सा प्रोसेस फूड खाने की ज्यादा उनको आदत होती है. जब हम भी कोई जब भी किसी अच्छे हैबिट को हम रिवॉर्ड करना चाहते हैं, मतलब जिसको प्यार जताने का तरीका बोलते हैं, तो हम एक स्वीट देते हैं या चॉकलेट देते हैं. कैसे तो वो एक चीज जो है हमको वो छोड़ना चाहिए. वो आदत रिवॉर्ड करने के बहुत सारे तरीके हैं. आप किताब दे दो या कुछ और एक्टिविटीज करा लो या घुमाने ले जाओ बच्चों को, है ना. तो मीठा देना हमेशा एक रिवॉर्ड देने का तरीका जो है वो गलत है. तो ये थोड़ा सा चेंज करना हो. ही पेशेंट हमारे पास आता है जिनकी गलत है, वो अपना जो है एक हम जैसे कहते हैं हर 6 मंथ्स में एक रूटीन डेंटल चेकअप कराना चाहिए, ताकि हम अगर सडन है तो अर्ली एज में उसको अर्ली स्टेजेस में उसको हम इंटरवीन कर सके, है ना. तो उससे आपको लॉन्ग टर्म में काफी एक तो पेन सहना भी आपको बच जाएगा, प्लस आपके खर्चे भी इतने नहीं होते.
0: नक्शे सर छाना दी मता दी कना ओरल कैंसर जिन चिंगा ताज बनना सर छाना अति यंखनुल्ला हेर इज दी ओरल कैंसर को गजोक शिकिन या ची वैसे चचा जिन सो रूले लूसना चचा जिना सो अजर्मो उचा जिना या खे नंगुसला या स्वे नंगुसला जंग मता अर्थास्वर रचा जिन की यू ओरल कैंसर इन चुजे
1: ओरल कैंसर से रिलेटेड इतना तो नहीं होता उसका. बाकी ओरल कैंसर के अपने कॉजेज होते हैं. इट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ कैंसर आफ्टर सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट कैंसर, है ना, और प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में. उसके बाद ओरल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन. तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, बहुत एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं और एक जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं. कुछ जीन्स होते हैं जो कि हमें प्रीडिस्पोज करते हैं कैंसर के लिए, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना या शराब का सेवन करना, ये सब चीजें इस रिस्क को बढ़ा देते हैं. हर एक चीज मॉडरेशन में होना चाहिए. अगर आपके मुंह में कोई छाला है जो कि ठीक नहीं हो रहा है काफी टाइम से, 1 महीने 2 महीने से, तो आप अपने पास के डेंटिस्ट को या किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन को दिखाएं, ताकि वो उसका अर्ली स्टेज में जांच करें, ताकि ये फैलने से पहले ही हम उसको ठीक कर सकते
0: हैं.
1: अल्सर शिक्षा दिया पहला अल्सर जरना के ना जख्म शिक्षा. वो नॉर्मल एरा दे ट्यूब अगर हम कोई ऑइंटमेंट देंगे उससे ठीक नहीं होता, ठीक है ना. तो अगर आपके मुंह में जैसे मैंने बोला कोई चीज जो ठीक नहीं हो रहा है काफी टाइम से आपका वहीं पे वो या बढ़ रहा है साइज में, ओरल कैंसर ये चीज एक खसूसियत होता है, ये जल्दी से बढ़ता है. तो सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा बोलते हैं, फैलता जल्दी है. तो उसके लिए आपको जब भी आप ऐसा नोटिस करें कि आपके मुंह में कुछ छाला है या जख्म है जो ठीक नहीं हो रहा है इवन लोकल ट्रीटमेंट की वजह से, तो आपको जल्दी से दिखाना पड़ता है. तो इसमें अगर प्री कैंसरस स्टेज में होता है तो हम उसको एक्सरसाइज करके या कुछ लोकल मेडिकेशन से ठीक कर सकते हैं. एक बार ये फुल फ्लज सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा बन गया, उसके बाद इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट फिर करना पड़ता है, जिसमें कि रिसेक्शन होता है, सर्जरीज होती है.

0: आरटी या कीमो भी देना पड़ सकता है लेटर स्टेज।
1: बख्शी सर,
0: अर्ली स्टेज इंटरवेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: यानी तामचिक वक्त चलता है ना कदबे सब पिकाने
0: का ठीक है चल
1: जिस पर सच है ना यंग आता दूसरों शोंग दूसरों की से बार साना क्लाइंट वंदु ने दे ना आता थो ना दुख सिंस सिंस फ्री ना चेमिन से बार पे आना क्लाइंट जस्ट बने ब्लीडिंग चेस जस्ट को गज उसी का ना सुन
0: उधर यंग आती लैंग्वेज एंड जिंजिवाइटिस जरूरत या पेरोनांटाइटिस जरूरत। अगर शायद अगर आपका गम सिर्फ इन्वॉल्व है तो जिंजिवाइटिस कहते हैं। अगर हड्डी भी आपका उसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से हड्डी भी आपका गल जाता है तो उसको पेरोडोंटाइटिस बोलते हैं। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है कि हमारे मुंह में जैसे कि मैंने कहा प्लाक जमता है, प्लाक जब कैल्सिफाई होते हैं तो उसको कैलकुलस बोलते हैं। और दो अगर ना तो साफ मचूंगा वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बनता है जो कि आपके मसूड़ों को इन्फ्लेम कर देता है।
1: ब्रश तंग से साफ चुना की
0: कुछ चीजें ब्रश करने के बाद भी साफ नहीं होती हैं तो इसीलिए आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाके साल में एक बार प्रॉपर क्लीनिंग कराना पड़ता है। उसको हम स्केलिंग बोलते हैं, स्केलिंग एंड क्यूरेटाज। तो अगर आप कराएंगे तो आपका ओरल हाइजीन जो है वो मेंटेन रहेगा अच्छे से।
1: छुन्चेप फुल लंग चुक्ला सो रुलिन या गचुक्स चीज का त्यो तना सो सेन्जेरी या देना चुक्ला ति ओरल क्यान्सर पोयरेस बस बस मुज गचुक्स तक्सना गतु चसिन या गता गगा चीज सुन जार गुशा सिन गा मिजार गुशा सेन्जेरी छना गता वक्स निन्सेक तुक्स यरा जुचेरी मुद्रे देरी सेरी रिन्थोशन वक्स पिरना वक्स पिनसे जानो मुस पेरतम। دنر تیسر یپنار سخمس تطکی کسنا بازد حجی حسین بابیز کتیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم خدا

安心。

पीपल होप फॉर बेटर फ्यूचर, जिम्मेदार थे बेटर फ्यूचर की उनको उम्मीद देना चाहिए, ऑप्शन देना चाहिए। अगर मेडिकल में आपको नहीं हुआ तो इंजीनियरिंग में होगा, या इंजीनियरिंग में हो तो आप कुछ बिजनेस कर सकते हैं, और बहुत बहुत सारे रास्ते हैं, इंसान हर चीज कर सकते हैं। जिनसे बातें उम्मीद ना चाहे चलो ड्यू नहीं करते लास्ट बार जरूरी जो जी प्रिवेंशन ही लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट पे जो मेडिसिन टाइम टेबल हो प्रोवाइड बचा, मेडिसिन प्रोवाइड बचा या गा मीक या दिमागी शिकार उत को हाँ मेंटली शिकार उतना को उनको प्रोवाइड करना चाहिए मेडिसिन टाइम टेबल को अच्छा कोई डोज पर मुकम्मल से जो ताकि वो रिकवर चुक वो दे एंजाइटी आना छना भी मतलब जरूरी जो छना मतलब हर चीज का मतलब प्रोग्राम भी दूचा मेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम भी दूचा ताकि मतलब सोसाइटी अनु मतलब दून मिचुक छना जो दी वर्ल्ड सोसाइटी प्रिवेंशन डे वो 10 सितंबर मतलब हर दुनिया ते हर कोना कोना में बेतन छना जो 2003 में शुरू सो से हर मुल्क में इसको मनाए जाते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह चना दुनिया में लगभग भी नोटंगाते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जरे इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सोसाइटी प्रिवेंशन डी एनजीओ ने दुनिया वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ चना दुनिया लगभग दिखा हर जगह हर वर्ल्ड हर कोना कोना नुक हर कंट्री में इस प्रोग्राम को मनाए जाते हैं दो अहम दी प्रोग्राम कुन बे ताकि मती डेवलपमेंट नमो यंबो यंबो दी सोपो लास को मती का ना छेन तो मती सोसाइटी में ता थोनो तंग चना उदुन कम चुक और चना दी एक बड़ा एक इनिशिएटिव है मती हिंदुस्तान नमो मती दियो बचा बेनियोत चना मता दी डाटा न थोनो मता हैरान चिंदु है जो हाँ कि मतलब मती एनसीआरबी जो है जो नेशनल क्राइम ब्यूरो दे है जो चना कोई डाटे दो 2013 में चना 24,000 population mati miss suicide bas in chand dos ek sochni wali baat hai taqrib din mati hindustan is very good ata har sector nu ata socially mala economically ya mala gat society chand dos taqrib din sadi sa kya ho raha hai सोसाइट का बहुत ही केस छिन सोसाइटी नु छा इन पे हमें रोक लगाना मतलब जरूरत दी रोक लगाई भी फिर मतलब छिप ओशन यूज बनाते एक प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम चुनाते छिप ओशन हर स्कूल अनुगति कॉलेज लेवल का स्कूल लेवल का दी गवर्नमेंट से बता दी प्रोग्राम प्रोवाइड बनो तंग छा दून शिशु की तुम्हारी फ्यूचर उन मतलब सेव लुसुंगाती सोसाइटी कम चुक और माती कंट्रीज ताकि बुक चना जो माती दी लाख तो तुम माती नेशनल लेवल माती इंडिया लेवल माती हर गवर्नमेंट हर कदम उठाई भी नहीं था कि क्राइम पो दी हाँ जो सोसाइटी क्राइम चिंद दी हाँ जो दी रिड्यूस भी फिर रिड्यूस भी फिर कम भी फिर माती गवर्नमेंट इस नेशनल स्ट्रेंथ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर यंग पीपल चुन मजूद हाँ जो सर्विस तानु फुल ना माती नौजवान उन ना माती फुल सारा कि सर्विस तानु तान कि माती हर या आयुष्मान अर्योग मंदिर जन जहाँ जो दे माती डिस्पेंसरी उद्दे हाँ जो या सीएचसी उद्दे हाँ जो PHC जिनसे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जिनसे राजू माती गाँव गाँव में दून का माती डॉक्टर कुन माती हावो तो मत दून नेशनल का माती एम्स जो बड़े बड़े एम्स है PGI है जन दून गाँव में नो माती दी उन सेटअप उन लड़नो सोसाइटी से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम को उस मुनाकिब बचा ताकि माती सोसाइटी ने दी जो सोपोलास कुन कम चुका जो चना एक माती इंडिया नो एक प्रोग्राम चिकने इंडिया सोसाइटी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजिक नाती इंडिया गवर्नमेंट 2022 संचोस पिन कोई पूरा लक्ष्य होत कोई टारगेट होत की ची 2030 सक पे ची बचा 10% सोसाइटी अनु प्रिवेंशन पु कम बचा निंदा सोसाइटी पु कम बचा चले आज 10% छ मा माता थो दे मतलब माते 2017 डाटा माते इंटर शेयर बस की 1,24,000 मीस माती सोसाइट बसंतु माते हिंदुस्तान आनो छना ये सोचने वाली बात है हम इस पे गौर और फिक्र करके इसको कहीं ना कहीं गत उस मतलब चित्ते चित्ते बोलता जा गत उस चित्ते जा गत उस किस चीज से इंसान सोसाइट करे दूं माता ना करते माता ना थोड़ा दहाजो छना उदून माते उम्मीद फिक्र बचा माता वार्निंग का तो दुख पहाजो छना मादियां नहीं था

0: 어제 족보 퀴즈 3번 하도 맞아 땜땜이가 공원 치바자 에버넷 프로그램 세컨 부치우 주제만의 코 세컨 부치우 주제만의 양 사이언틱 코 소사이티 양 사이언틱 세컨 부치우 주제만의 워닝 사인 부 소셜 위드로얼 오 소사이티 से क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं सोसाइटी आइसोलेशन जैसे जो है को सोसाइटी ने मोमो दुख पकड़ सको तो चिन मन सोसाइटी हम मन दुख चामिन सोसाइटी हम मन को गन्ना सोचे सोसाइटी चना उस सोसाइटी को मन को इग्नोर बसे आइसोलेट चना उसमें फिर उसके बाद उस इंसान में बुरे बुरे ख्याल हो चिन है जो अलग अलग ख्याल हो सको चीज फिर वो क्या हो जाते हैं सोसाइट का शिकार हो जाते हैं चना उदू निगे में मतलब उदे उदू जो इंसान उन मतलब चुपचाप चीन बचा फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस खोज चीन मन दी बसे सब कुछ बेकार है चीन हर चीज बेकार है चीन उदे सेन दी जिंदे वार्निंग सोसाइटी सेन खचिक नियन खुश जैसे बेकार है सिले बेकार ही फलान बेकार ही नशे में ना जो हाजू चना उदून बेकार बच्चा सोसाइटी ने जो बेकार ही नशीन देखो चना हर चीज में सिले बेकार तो उदून इसके बाद वो क्या हो जाता है फिर वो सोसाइट कर देते हैं चना उदून के बाद प्रिवेंशन बचा दून यहाँ चीज चीज बना खोस यहाँ साइन जी एंजाइटी उसमें बहुत सारे मतलब या खो नाउमीदी हो जिन बाया दुखी में हो जाता है रात को सो नहीं पाते हैं चना देश सैन इन उदून मते दिहाना जैसे मते फूनी का या मते नौजवान स्टूडेंट सुनी का या नौजवान योर मते सोसाइटी ने उदूनी का मते तेंदु चा उदूनी बारं चना उदू तो सैन का तो योना वार्निंग सैन योना चना मते दून चिवचा अवेयरनेस तान चिक उसको टाइम पे ट्रीटमेंट करना है या हॉस्पिटल का खेल बोलो डॉक्टर लगा ये ना मते सोसाइटी ने मोरल वैल्यूज तान से खा काउंसलिंग वासे उदून चीसुन खातुन बचा दून यहाँ से चिक मना अशत मना खतरनाक वार्निंग ची दून की फाइनेंशियल प्रॉब्लम चले नती हाजू गरीबी से ना गता फाइनेंशियल प्रॉब्लम चले फाइनेंशियल प्रॉब्लम चले वो इंसान कुछ नहीं कर पाते हैं चले खुशी वाचिन जिंदगी जो गलत हल्का तुम बाचिन चु
1: Dari supaya antes manzur sari kana tak cingnya nunut pin derna tak punam bo demi si acan moni kortans bo thamatun nan me dugna yang yantanam bo skatuk cuk deman punga ejazah syazah bo jaju kada narsakmani fakrimu.

0: होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: श्रीनगर, जम्मू और गुलमर्ग में जारी रंगे सिनेमा नामी अपनी नौयत का पहला बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। फेस्टिवल के आखिरी रोज आज भी कई फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। नीज फिल्म साजी और सिनेमा से जुड़े कई बहसों मुबाहसे और लेक्चर्स का इनेकाद किया गया, जिनमें फिल्म शायकीन बिलखसूस नौजवानों की फिल्म साजी और स्टोरी टेलिंग के मुख्तलिफ पहलुओं से रूशनास कराया गया। SKICC श्रीनगर में इस वक्त इख्तितामी तकरीब जारी है। तकरीब पर इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर एल मुर्गन मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद हैं, जबकि वजीर आला उमर अब्दुल्ला, इत्तलात व नशरियात की वजारत के सेक्रेटरी चंचल कुमार, चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लो और दीगर कई अहम शख्सियात भी मौजूद हैं। इख्तितामी तकरीब पर मुख्तलिफ जुमरों में अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने इस मौके पर कहा,
1: Today we close with confidence. 135 films from 40 countries were screened. Filmmakers from across the world came, engaged, and experienced Jammu and Kashmir, its landscape, its people, and its possibilities. Jammu Kashmir and cinema share a long, beautiful bond, and Jammu and Kashmir was a preferred destination for film shooting for many decades. Our mountains, lakes, and Mughal gardens.
0: इस फिल्म फेस्टिवल की खास बात यह रही कि शोहरा आफाक झील डल में फ्लोटिंग थिएटर कायम किया गया, जिसमें फेस्टिवल के पहले तीन दिनों के दौरान बॉलीवुड की कई मारूफ फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई, जिससे झील डल के किनारे काफी तादाद में शायकीन महजूज हुए। फिल्म फेस्टिवल की मुनासिबत से दीगर कई मकामात पर मकामी सतह के प्रोग्राम मुनक्कद किए गए, जहां मकामी फनकारों ने अपने फन का भरपूर मुजाहरा किया। वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कहा है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से बॉलीवुड के साथ कश्मीर वादी के रिश्ते अब मजीद उस्तवार होंगे और जो बेहतरीन फिल्म साज हैं वो यहां अपनी फिल्मों और फिल्मी नगमों की अक्सबंदी के लिए जरूर आएंगे। उन्होंने कहा कि फिल्मसाज साथ ही यहां फिल्मों में काम करने के लिए मकामी फनकारों को भी मौके फराहम करेंगे।
2: बॉलीवुड का और कश्मीर का एक पुराना नाता रहा है, हम लोग चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप दोबारा कायम हो और हमारे बेस्ट फिल्म मेकर्स हैं वो यहाँ आके अपनी फिल्में बनाएं या अपने गाने शूट करें और हमारे लोकल टैलेंट को भी वो हंट करें, वो देखें उनका टैलेंट कैसा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो यहाँ लोकल फिल्में भी बनी है उनको भी जो है पब्लिसिटी मिलेगी और जो यहाँ का जो हमारा टैलेंट है, चाहे प्रोडक्शन में है चाहे एक्टिंग में है, उनको शायद ब्रेक मिले, वो इन लोगों से मिले हुए हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं, इनसे अपने नाते और मजबूत कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें जो कश्मीर के लिए ये पब्लिसिटी का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा।
0: बाकी खबरों से पहले ये तिजारती वक्फा।
3: लूकन हिज फिकर लूकन हिंदान टीबी मुखालिफ भारत अभियान सासी टीबी बीमारी हिज निशानी ताप सीनस दग थक सत खून यून रोतल अरख मल न रोजन वजन कम गसन तो बहक तिशी टीबी बीमारी हिज अलामत टीबी छुन लाइलाज के तमाम सरकारी मरकजन पे टीबी बापत टेस्ट इलाज बिल्कुल मुफ्त जानकारी प्रयोग नजदीकी हेल्थ सेंटर या टीबी मुक्त भारत अभियान ऐप पे टीबी हारित मुल्क जेने लुक मफातस मजेरी स्टेट ट्यूबरक्लोसिस सेल डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर।
0: नाज़िम इत्तला'आत श्रेया सिंगल ने जम्मू कश्मीर में मुनक्कदा इस पहले फिल्म फेस्टिवल के आसन इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि इस बड़े इवेंट में मुल्क और बैरून मुल्क से आए हुए फिल्म साजों और मकामी फिल्म शायकीन की सरगर्म शिरकत निहायत हौसला अफजा रही। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस फिल्म फेस्टिवल को एक सालाना सरगर्मी बनाने के इम्कान पर गौर किया जा रहा है।
4: एक आइडिया था ये फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर का, वो यही था कि हम लोग एक मोमेंटम को एक बढ़ावा दे, फिल्म फ्रेटर्निटी के साथ एक कनेक्ट हो, यहाँ का लोकल जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं बाहर से जो लोग आए आपस में मिले, आइडिया शेयर हो, उसका सक्सेस या वो तो अभी बताना है स्टूअर्ड, बट वी आर होपिंग जो हमें बाहर के गेस्ट से भी जो हमें फीडबैक्स आए हैं, जो उनका एक्सपीरियंस रहा है इट हैज अमेजिंग, एंड जो हमें यहाँ से भी रिस्पॉन्स आया है चाहे वो स्टूडेंट्स का हो, यूथ का हो या एंथुजियास्ट फिल्म एंथुजियास्ट का, इट हैज बीन वेरी वेरी ओवरवेलमिंग फॉर अस। सो ये हमारे होप है कि इट विल टर्न इनटू एक्चुअल कंक्रीट एक्शंस एंड वी शैल सी द रिजल्ट्स।
0: इत्तला'आत व नशरियात के सेक्रेटरी चंचल कुमार ने मुख्तलिफ सरकारी प्रोग्रामों के बारे में मालूमात की भरपूर और असरदार तशहीर के लिए मुख्तलिफ सरकारी मीडिया इकाइयों के माबेन करीबी तालमेल पर जोर दिया है। श्रीनगर में इत्तला'आत व नशरियात की वजारत की सभी इकाइयों की कारगुजारी का जायजा लेते हुए उन्होंने आकाशवाणी

अपना जलवा दिखा रही हूं, लेकिन एक शाम जिस आशिक ने शाम गम का नाम दे रखा है, उनकी जिंदगी की तमाम खूबसूरत ख्वाबों पर अंधेरा बनकर छा गई। दिल में जिल मिल करता हुआ चिराग बुझ गया और गहरी तारकी छा गई।

कुछ आपके अजीब हसरत दीदार है वरना, कुछ आपके अजीब हसरत दीदार है वरना, क्या गुल नहीं देखे कि गुलिस्तान नहीं देखा।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहे।
3: खो गया इंतजाम।
4: किसका?
3: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।

0: RBI कहता है,
1: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर,
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
0: RBI कहता है,
1: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: अभी आप फिल्मी नगमों पर अपने प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव और FM पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज है। सामीन, शब के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से खबरें रिले करेंगे, रिले का इंतजार कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation.

0: Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए।
0: चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। आदित्य L1 इज अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सन। लास्ट ईयर एन इंडियन विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लुकिंग अहेड वी एम टू एस्टैब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन टू द मून बाय 2040। इन ऑल दिस एफर्ट्स आवर गाइडिंग प्रिंसिपल हैज बीन क्लियर दैट बेनिफिट मस्ट रीच ऑल ह्यूमैनिटी।
1: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेकमी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
2: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
3: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेकर ट्रैफिक से लेकर लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
2: भारत की अध्यक्षता 4 प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन राष्ट्र

0: राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। दो दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित

0: विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज एक स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन एक स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India supports a safe and sustainable space domain. Virtually addresses first international space summit in Paris. New Delhi gears up to host world leaders at 18th BRICS summit this weekend. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping expected to arrive tomorrow. Home Minister Amit Shah reviews disaster preparedness. Calls for climate-resilient villages and cities under zero-casualty vision. India and Russia step forward on joint production of civil passenger planes and deliveries of 105 regional turboprop aircraft to Indian operators. Center amends e-commerce rules to tighten norms on price transparency, sponsored listings and search result manipulation. India Open campaign at World Para Shooting Championship in South Korea with 4 medal haul, including a gold. And in Women's Junior Asia Cup hockey, India storm into semi-final with record 19-0 win over Pakistan in China. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
2: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
1: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said, ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions.
2: ISRO, which stands at the heart

0: in the quarterfinal at Mochi in China today. The Indian men's team has already entered the semifinals of the Junior Asia Cup. And in women's cricket, India were 107 for 3 in 16 overs against Bangladesh in the first semi-final match of Asia Cup in Dubai when reports last came in. Earlier, Bangladesh women won the toss and opted to field. Indian team has so far remained unbeaten in the tournament. Benchmark domestic equity indices ended 0.2% higher today, snapping a three-day losing streak. The Sensex gained 138 points to close at 74,903. Nifty added 46 points to settle at 23,478. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India supports a safe and sustainable space domain, virtually addresses first international space summit in Paris. New Delhi gears up to host world leaders at the 18th BRICS summit this weekend. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping expected to arrive tomorrow. Home Minister Amit Shah reviews disaster preparedness, calls for climate-resilient villages and cities under zero-casualty vision. India and Russia step forward on joint production of civil passenger planes and deliveries of 105 regional turboprop aircraft to Indian operators. India Open campaign at World Para Shooting Championship in South Korea with four medal haul, including a gold. And in Women's Junior Asia Cup Hockey, India storm into semi-final with record 19-0 win over Pakistan in China. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक महफूज और पायदार खलाई शोबे की हिमायत करता है। उन्होंने वर्चुअल तौर पर पेरिस में मुनाकिदा पहले बैन-अल-अक़वामी खलाई समिट से खिताब किया। नई दिल्ली इस हफ्ते के आखिर में होने वाली 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में आलमी रहनुमाओं की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग के कल भारत पहुंचने की तवक्को है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कुदरती आफात से निमटने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कोई भी हलाकत न हो के नजरिए के तहत आबोहवा की तब्दीलियों का मुकाबला करने वाले मजबूत गांव और शहर बनाने पर जोर दिया। भारत और रूस ने सिविलियन मुसाफिर तैयारों की मुश्तरक तैयारी और भारतीय ऑपरेटर्स को 105 इलाकाई टर्बोप्रॉप तैयारियों की मुमकिन फराहमी के सिलसिले में पेशरफ की है। मरकज ने ई कॉमर्स जाब्तों में तरमीम करते हुए कीमतों में शफाफियत, स्पॉन्सर शुदा फहरिस्तों और तलाश के नतीजे में हेरफेर से मुतालिक जवाबित मजीद सख्त कर दिए हैं। जनूबी कोरिया में जारी आलमी पैराशूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने शानदार आगाज करते हुए चार तमगे हासिल किए, जिनमें सोने का एक तमगा भी शामिल है। और खवातीन के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत रिकॉर्ड 0 के मुकाबले 19 गोल की जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बैन-अल-अक़वामी कानून, बातचीत और कसीर मुल्की तआवुन पर मबनी एक महफूज, पुरमन और पायदार खलाई शोबे की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि साइंसी डाटा को खुलेपन और दयानतदारी के साथ पूरी इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वजीर आजम ने यह बात आज फ्रांस के शहर पेरिस में मुनाकिदा बैन-अल-अक़वामी खलाई समिट से वर्चुअल तौर पर खिताब करते हुए कही।
2: इंडिया अप्रोच इज रूटेड इन वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। दिस स्पिरिट मस्ट नाउ ट्रेवल बियॉन्ड अर्थ। वी सपोर्ट अ सेफ, सिक्योर, पीसफुल एंड सस्टेनेबल स्पेस डोमेन एंकर्ड इन इंटरनेशनल लॉ, डायलॉग एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। साइंटिफिक डेटा मस्ट सर्व द कॉमन गुड विद ओपननेस एंड इंटीग्रिटी। इंडिया स्पेस जर्नी रिफ्लेक्ट दिस फिलोसॉफी।
1: वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि जैसे जैसे खलाई मदार ज्यादा गंजान होते जा रहा है और खलाई सरगर्मियों में शामिल ममालिक और इदारों की तादाद बढ़ रही है, टकराव के बजाय तआवुन, मुख्तसर मुद्दती फायदे के बजाय पायदारी और अखराज के बजाय शमूलियत को तरजीह दी जानी चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि भारत का खलाई सफर इसी फलसफे की अक्कासी करता है।
2: फॉर सेंचुरीज

0: स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन. टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज. द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट. अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव. एज ऑर्बिट्स बिकम मोर क्राउडेड, टेक्नोलॉजीज मोर पावरफुल एंड एक्टर्स मोर न्यूमरस.
1: भारत के खलाई सफर में होने वाली नुमाया पेशरफ्त का जिक्र करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि चंद्रयान स्वयं ने भारत को चांद के कुतुब जनूबी के करीब उतरने वाला दुनिया का पहला मुल्क बनाया, जबकि आदित्य L1 सूरज के राजों से पर्दा उठाने के अमल में मसरूफ है.
0: चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल. आदित्य L1 इज अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सन. लास्ट ईयर एन इंडियन विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. लुकिंग अहेड वी एम टू एस्टैब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन टू द मून बाय 2040. इन ऑल दिस एफर्ट्स आवर गाइडिंग प्रिंसिपल हैज बीन क्लियर दैट बेनिफिट must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way. The energy of enterprise is joining the excellence of ISRO.
1: وزیر اعظم نے خلائی سفر میں ISRO کے رول کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ISRO نے اپنی شاندار کارکردگی اور کم لاگت والے خلائی مشنوں کے ذریعے عالمی سطح پر کافی تعریف حاصل کی ہے. انہوں نے کہا کہ ISRO کی صلاحیتیں کسانوں اور ماہی گیروں کی مدد, मौसम की पेशगोई, कुदरती आफात से निमटने और जहाजरानी समेत मुख्तलिफ शोबों में काम आ रही हैं. वजीर आजम ने कहा कि 34 ममालिक के 430 से ज्यादा सेटेलाइट भारतीय रॉकेटों के जरिए खला में भेजे जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि इसरो की टेक्नोलॉजी और बैन अलावामी शराकतदारी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है. जनाब मोदी ने भारतीय साइंसदानों, इंजीनियरों और तकनीकी माहिरीन की कई नस्लों की खिदमत, लगन और मेहनत को सराहा. वजीर आजम ने कहा कि इसरो ने मिशन दर मिशन और कामयाबी दर कामयाबी अपनी साख कायम की है और भारत को खलाई सफर करने वाले मुल्कों में 22 इफ्तिखार बनाया है. नई दिल्ली इस हफ्ते के आखिर में 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है. कौमी राजधानी में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया गया है और वसी पैमाने पर तैयारियां की गई हैं. भारत मंडपम में हफ्ते के रोज शुरू होने वाली दो रोजा सरबराह मीटिंग दुनिया की 11 बड़ी उभरती और तरक्की पजीर मईशतों को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा करेगी. इब्तदा में ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल थे. 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब को शामिल किए जाने के बाद ब्रिक्स में तौसी हुई, जबकि इंडोनेशिया 2025 में इसमें शामिल हुआ. बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम ब्रिक्स शराकतदार ममालिक की हैसियत से सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे. ब्रिक्स ममालिक मजमूई तौर पर दुनिया की तकरीबन 49% आबादी और आलमी मजमूई घरेलू पैदावार GDP के तकरीबन 40% की नुमाइंदगी करते हैं. चीन की वजारत खारजा ने आज ऐलान किया कि सदर शी जिनपिंग इस हफ्ते वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दावत पर सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए भारत पहुंचेंगे. उनका यह दौरा आलमी सतह पर गैर मुस्तहकम सूरतेहाल, मगरबी एशिया में जारी तनाजे और रूस यूक्रेन जंग के दरमियान हो रहा है. तकरीबन 7 बरसों में ये सदर शी जिनपिंग का भारत का पहला दौरा होगा. पेश है एक रिपोर्ट.
2: कौमी राजधानी ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के लिए आलमी रहनुमाओं के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार है. रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की तवक्को है. यह एक बड़े पैमाने की लॉजिस्टिकल मशक रही है, जिसमें वजारत खारिजा ने वजारत दाखला और दीगर वजारतों के साथ साथ दिल्ली पुलिस से भी करीबी राबता और ताउन किया है. दिल्ली पुलिस ने आने वाले मुअज्जज मेहमानों को ज्यादा से ज्यादा तहफ्फुज़ फराहम करने और आवाम को कम से कम दुश्वारी के लिए वसी इंतजाम किए हैं. कौमी राजधानी में दिल्ली पुलिस के तकरीबन 15,000 अहलकारों और नीम फौजी दस्तों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं. दिल्ली पुलिस के खसूसी कमिश्नर हिफाजती सिक्योरिटी डिवीजन मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा है कि मुअज्जज मेहमानों की आमदोरफ्त के रास्तों पर खसूसी निगरानी के कैमरे भी नसब किए गए हैं.
3: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है. ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है. हमने सिक्योरिटी से लेकर ट्रैफिक से लेकर लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं.
2: भारत की सदारत का महवर मौजू के चार सुतून, मजबूत

तक आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। सदर जमहूरिया के सेक्रेटरिएट ने कहा है कि इस हफ्ते राष्ट्रपति भवन के सब्जादार में चेंज ऑफ गार्ड तकरीब भी मुनाकिद नहीं की जाएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में एक मीटिंग के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आगा खान तरक्याती नेटवर्क की खिदमात को सराहा। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और प्रिंस आगा खान के दरमियान हुई बातचीत में पानी, सफाई, सुथराई, खवातीन की क्यादत में अपनी मदद आप ग्रुपों, तालीम, माशरती तरक्की के तई आगा खान तरक्याती नेटवर्क की खिदमात के बारे में तबादले ख्याल किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने हिफ्जान सेहत, ज़राअत, देही तरक्की, नौजवान और खवातीन को बाइख्तियार बनाने में आगा खान तरक्याती नेटवर्क के साथ भारत के इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी की क्यादत वाली हुकूमत ने मुल्क के कुदरती आफात से निमटने के निजाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है और इसका हदफ जानी इतलाफ को सिफर तक लाना है। जनाब शाह नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM की गवर्निंग बॉडी के तीसरे इजलास की सदारत करते हुए खिताब कर रहे थे। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत तीन बुनियादी सतूनों पर तवज्जो मरकूज कर रही है जिनमें खतरात में कमी, कबलज वक्त इंतबाही निजाम और सिफर जानी नुकसान शामिल हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिफर जानी नुकसान का नुक्ते नजर सिर्फ कुदरती आफत के मकाम तक महदूद नहीं रहना चाहिए बल्कि आफात की रोकथाम पर भी तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। भारत और रूस ने आज सिविलियन मुसाफिर तैयारों की मुश्तरक तैयारी और भारतीय ऑपरेटर्स को इलाकाई परवाजों के लिए 105 टर्बोप्रॉप तैयारों की मुमकिन फराहमी और इससे मुतालिक इंतजाम पर बातचीत की। शहरी हवाबाजी के वजीर राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में सनत व तिजारत के रूस के वजीर एंटन अलीखानोव के साथ मुल्क में इलाकाई फजाई राबते की बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करने के लिए सिविलियन मुसाफिर तैयारों की मुश्तरक तैयारी के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। बातचीत में मुजवजा मुआहदों में भारतीय ऑपरेटर्स जिनमें पिनाकल एयर, एयर केरला और स्लीक एविएशन शामिल हैं जिनके लिए 105 इलाकाई टर्बोप्रॉप तैयारियों की मुमकिना फराहमी और उसके इंतजाम भी शामिल हैं। हुकूमत ने सारिफीन के तहफ्फुज ई कॉमर्स जवाबित 2020 में तरमीम की है ताकि कीमतों में शफाफियत, स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग, सर्च रिजल्ट में हेरफेर और गलत तौर तरीकों से मुतालिक जाब्तों को मजीद सख्त किया जा सके। तरमीम शुदा जवाबित के तहत ई कॉमर्स कंपनियों को कीमत में कटौती के ऐलान के वक्त कम की गई कीमत और उससे पहले की कीमत के बारे में जानकारी देना पड़ेगी। इन जवाबित के तहत ई कॉमर्स कंपनियों की सर्च रिजल्ट में हेरफेर पर पाबंदी लगाई गई है जो सार्फिन को गलत मालूमात फराहम करती हैं या सर्च क्वेरी के नतायज को मुतासिर करती हैं। तरमीम शुदा जवाबित से ज्यादा शफाफ, जिम्मेदाराना और सार्फिन पर मरकूज ई कॉमर्स इको निजाम कायम होगा। ये तरमीम शुदा जवाबित आइंदा बरस 1 जनवरी से नाफिजुल अमल होंगे। आलमी पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने जनूबी कोरिया के चंगबोन में पहले दिन 1 सोने का, 2 चांदी के और 1 कांस्य का तमगा जीता है। मोना अग्रवाल, अवनी लखरा और मिली शाह पर मुश्तमिल भारतीय खवातीन टीम ने सोने का तमगा जीता। मोना अग्रवाल ने चांदी का तमगा जीता जबकि अवनी ने कांस्य का तमगा हासिल किया। खवातीन के जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत आज चीन के मौके में पाकिस्तान को 19-0 से जबरदस्त शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारत ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बरकरार रखा और इस टूर्नामेंट में बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने 19 गोल किए, उसे 18 पेनाल्टी कॉर्नर और 1 पेनाल्टी स्ट्रोक मिला जबकि पाकिस्तान 1 भी गोल नहीं कर सका। भारत की तरफ से पूजा मलिक ने 3 गोल करके हैट्रिक लगाई। भारतीय जूनियर खवातीन टीम हफ्ते के रोज सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया और मलेशिया के दरमियान मैच जीतने वाली टीम का सामना करेगी। भारतीय मर्दों की जूनियर हॉकी टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक महफूज और पायदार खलाई शोबे की हिमायत करता है। उन्होंने वर्चुअल तौर पर पेरिस में मुनक़दा पहले बैनुल अक़वामी खलाई समिट से खिताब किया। नई दिल्ली इस हफ्ते के आखिर में होने वाली 18वीं ब्रिक्स सरबरा मीटिंग में आलमी रहनुमाओं की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग के